0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: आज मैं आपको बहुत ही स्पेशल लव स्टोरी के बारे में बताने वाली हूँ और ये लव स्टोरी इज नॉट बिटवीन मी एंड अ गाय. दिस लव स्टोरी इज बिटवीन माय कंट्री एंड मी. तो हुआ ये था कि हाल ही में मैं इटली गई एंड एवरीवन थॉट इट वाज गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक ट्रिप एंड आई वाज रियली एक्साइटेड अबाउट इट. लेकिन जैसे ही मैं इटली पहुंची मैंने रियलाइज करा कि यार यहाँ के फूल पत्ते तो एक ही तरह के ग्रीन हैं, यहाँ की बिल्डिंग सारी एक ही तरह की ब्राउन स्लैश बेज हैं, हमारे इंडिया में तो जहाँ देखो थूको जहाँ पर वहाँ पर कलर है. और आप मानोगे नहीं दैट विद इन द फर्स्ट 12 आवर्स ऑफ मी बीइंग इन इटली मैंने एक्चुअली रोम के स्टेशन पर आई लव माई इंडिया वतन मेरा इंडिया गाया है. आई एम नॉट लाइंग टू यू एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि प्यार सिर्फ दो इंसानों के बीच में नहीं होता है, प्यार अपनी कंट्री से भी हो सकता है. और इस तरह का प्यार कि उसके बाद बाकी के 6 दिन मैंने सिर्फ ये सोचा है कि भगवान मुझे बस वापस इंडिया ले जा, अगले 5 साल तक कहीं और ट्रैवल नहीं करूँगी. एंड यू नो अनदर रीज़न इज ऑल्सो बिकॉज इंडिया में इतना कुछ है देखने के लिए. हर 5 किलोमीटर में कल्चर बदलता है, खाना बदलता है, लैंग्वेज बदलती है. वहाँ पर मैंने फ्लोरेंस चेकआउट किया, रोम चेकआउट किया, आई वॉज इन अ स्मॉल विलेज कॉल्ड गुबियो और सब एक

0: Kahve Mirci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana.
2: Yabana.
1: Burga, burga. La vida para burga.
2: Mirci, burga.
3: हेलो,
4: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
3: हाँ जी।
4: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचा थे मेरे बेटे की शादी का, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
3: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
4: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
3: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
4: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी का फोटो बिगाड़ दिया यार, सारे दिमाग।
3: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
4: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
3: सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
4: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
3: अरे शर्म की क्या बात है सर,
4: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
3: किसी का
4: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार मैं।
3: लेंस कौन सा लगाया? नहीं
4: क्या, कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
3: गायब?
4: नहीं कल को
3: फोटो खींचे।
4: अरे लेंस ऐसे पूरे कपड़े कौन से, मैंने शेरवानी पहना की थी, शेरवानी गायब है अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
3: सर शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
4: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
3: नहीं साहब देखिए, केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
4: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
3: सर क्या बात, सुन के बनाया है?
4: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका, चलो छोड़ो मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
3: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
4: गड़बड़
3: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
4: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
3: दिखाइए
4: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
3: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए,
4: ऐसा सिस्टम है एक जगह होता है,
3: कहाँ होता है बताइए।
5: रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: हमारे पास एक कन्फेशन है और उसके लिए हम मिस्ट्री कॉलर भी नहीं कहलाना चाहते हैं। वाह वाह वाह।
3: द सीक्रेट बॉक्स।
2: इसे कहते हैं द मैन विद सम गुर्दा ऑन हिम। सो आई एम गोइंग टू कॉल लक्ष्य, लेकिन अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसी ही कोई सीक्रेट कन्फेशन है, आई प्रॉमिस आई विल कॉल यू माय सीक्रेट कॉलर और माय मिस्ट्री कॉलर। यू चूज द नेम बट द गेम रिमेन्स द सेम, कि मैं आपको नॉन जजमेंटल कानों से सुनूंगी मेरी जान। सो हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB विद योर कन्फेशन। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरे साथ लाइन पर लक्ष्य है। हेलो। हाय लक्ष्य, आपने मुझे पहचाना कैसे? लेकिन लेकिन आई कांट हियर योर वॉइस, इतनी माइल्ड है आपकी आवाज, थोड़ा सा ऊंचा बोलोगे?
4: या मे बी देयर सम नेटवर्क इश्यू।
2: नेटवर्क नहीं है, आप धीरे बोलते हो।
4: नहीं नहीं, माहौल नॉर्मल।
2: अब तो सही बोल रहे हो आप। क्यों इतने दुखी साउंड कर रहे हो, क्या हो गया आपकी जिंदगी में?
4: नहीं दुखी ऐसा कुछ नहीं है, की दुखी वाले सिचुएशन नहीं है एक्चुअली, बस एक टाइप कन्फेशन था।
2: कन्फेशन? कन्फेशन सुनने के लिए तो मैं हमेशा बेकरार रहती हूँ। क्या कन्फेशन है आपका, बताना जरा।
4: Actually, I'm studying in a college in Delhi right now. So last year, जो मेरी क्लास में एक फ्रेंड है जिशा, तो उसकी बर्थडे पार्टी पे उसके घर पे गए थे, वहाँ पार्टी थी। तो जस्ट नॉर्मल ड्रिंक्स वगैरह हुए वहाँ पे। तो जब पार्टी ओवर होने वाली थी तो काफी लेट हो गया, तो हम मैं जिशा थे और उसकी जो रिलेटिव आई थी, शायद भाभी थी या वैसे कुछ थे, तो हम वहीं पर स्टे कर गए उसके घर पे। तो हम सब एक्चुअली काफी ड्रंक हो गए थे उस टाइम पे, तो फिर वही उसकी भाभी और मैं थोड़ा कोजी हो गया।
2: मुझे लग रहा था कि यू विल हुक अप विद द गर्ल, नॉट विद हर भाभी। पर उसके बाद डिड यू लाइक स्टे इन टच विद द भाभी या इट वाज जस्ट अ वन नाइट थिंग?
4: नो नो, इट्स जस्ट लाइक अ वन नाइट स्टैंड।
2: नाइस, कैसा लगा आपको उसके बाद?
4: I actually don't remember much because we were drunk. But next day it was, I feel very embarrassing.
2: Oh, you poor thing. आपको रोशिफाय कर दूँ, will it make you feel better?
4: Yeah, I need the रोशिफाय.
2: Oh, here you go, my darling.
0: You've been रोशिफायड.
4: Okay. Thank you, Roshi.
2: Thank you, my darling. Thank you so much for trusting me with your incredible confession. It's crazy AF. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसी ही कोई confession है, why don't you hit me up Insta पर या FB पर? I'll be happy to talk to you. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, काम है आपसे प्यार करना, नाम की spelling है ROCHIE. So do whatever you have to do, लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची it's hot।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बाद देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौज है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर तो मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है, कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक और त्योहार है, हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं, ई का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां भूलना मत, हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमार कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार, 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: जीतूराज। Only on Mirchi, it's hot.

माय लॉर्ड, इस दुनिया को क्या होता जा रहा है? आई डोंट थिंक आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड एनीमोर. आपको पता है, एक रीसेंट सर्वे के हिसाब से इन इंडिया, आई मीन एंड दिस सर्वे वाज रियली यंग पीपल, सो जेन ज़ीज़ लेके चलते हैं, उन्होंने कहा है कि एक हफ्ते में 1.5 टाइम्स ऑफ गेटिंग नॉटी इज ऑल दैट दे नीड. बाकी के टाइम क्या कर रहे हैं? मतलब ये लोग किताबें तो पढ़ नहीं रहे हैं और ऐसे कोई पाथ ब्रेकिंग पिक्चरें भी नहीं बना रहे हैं, म्यूजिक सीन भी कोई खास बदल नहीं रहा है, तो व्हाट आर दीज पीपल डूइंग जो एक पूरे हफ्ते में दे आर ओके विद गेटिंग नॉटी 1.5? ये कैसी एवरेज है यार? तुम एक दिन में 3 बार खाना खाते हो, क्या हो गया इस दुनिया के रोमांस को? बट एक्चुअली इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन देख के मुझे ऐसे लग रहा है दैट इफ वी आर नॉट वेरी फ्रेंडली अबाउट यूजिंग प्रोटेक्शन, वी मे एज वेल जस्ट नॉट गेट नॉटी, है ना? आपको नहीं लगता है? बट नाउ आई एम आस्किंग यू अ पर्सनल क्वेश्चन, आपके हिसाब से हाउ मेनी टाइम्स इन अ वीक डू यू गेट नॉटी? एंड टेल मी द आंसर टू दैट वन. आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड, हिट मी अप, टेल मी योर स्टैट्स, एंड कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

आगे भागू मैं ये पीछे पीछे आए, कुछ ना देखे कुछ ना सोचे आंखें नीचे आए।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: सोसाइटी में इतना हॉट बंदा आया है, आई कांट इवन बिगिन टू टेल यू. मैं थोड़ी सी शाय टाइप ऑफ इंसान हूँ और हम यूजुअली वी बैंग इनटू ईच अदर या हमारे क्लब हाउस में या ऐसे कहीं पर भी, और हमारे बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स भी हैं, लेकिन हाउ डू आई फ्लर्ट विद हिम बट कीप माई फ्लर्टिंग गेम सटल इनफ कि उसे ये ना लगे कि आई एम हिटिंग हिम ऑन द हेड विद द फ्लर्टिंग हैमर.
0: रोशी के डीएम से
2: कनिका ने ये मैसेज लिखकर भेजा है. एंड कनिका, दैट्स अ टॉल ऑर्डर. यू आर लाइक, यहाँ मिलता है, वहाँ मिलता है, फ्लर्ट करना है, लेकिन ऐसे भी फ्लर्ट नहीं करना है कि लगे कि भाई बंदी फ्लर्ट कर रही है. आई थिंक जस्ट टू अप योर फ्लर्टिंग टेक्निक, सबसे पहले तो यू शुड ट्राई एंड बिकम फ्रेंड्स विद उसके जो फ्रेंड्स हैं इन द सोसाइटी. दैट वे यू कैन गेट इन टू हिज इनर सर्कल विदाउट मेकिंग इट अपेरेंट कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो. सेकेंड, आई थिंक यू शुड ट्राई लाइक अ लिटल बिट ऑफ अ प्लेफुल राइवलरी. मान लो कि वो क्रिकेट में एक पर्टिकुलर टीम को सपोर्ट करता है, तो उसकी जो डायरेक्टली लाइक कंपेटिटिव ऑपोजिट है, आप उसे सपोर्ट करो, बिकॉज दैट काइंड ऑफ प्लेफुल राइवलरी बिकम्स रियली अमेजिंग. अगर वो इफ़ ही लाइक्स फुटबॉल, देन यू कैन डू लाइक यू नो फुटबॉल की अपोजिंग टीम्स. ऑल्सो वंस इन अ वाइल जब आप उसके साथ हैंग कर रहे हो ना, उसे मीडियम रेयर रोस्ट करो थोड़ा सा. लाइक इट डजंट मीन गो ऑल आउट एंड कुक हिम विद इंसल्ट्स, लेकिन जस्ट हल्का सा ना उसकी थोड़ी सी ट्रिप लो. ओके, गाइज काइंड ऑफ डिग दैट. एंड इवन एज अ गर्ल, इफ समवन डिड इट टू मी, आई वुड रियली फाइंड इट फैसिनेटिंग. एंड आई फील लाइक वंस इन अ वाइल, जैसे आप क्लब हाउस में मिले, जस्ट गो फॉर अ वॉक विद हिम. लाइक थोड़ा सा ना जस्ट अप योर फ्लर्टिंग टेक्निक अ लिटिल बिट एंड देन पुल इट बैक, एंड दैट वुड वर्क द बेस्ट फॉर यू. बाकी यू साउंड लाइक अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल. दिस मैन वुड बी वेरी स्टूपिड टू नॉट शेयर हिज लव एंड हिज इंटरेस्ट विद यू.

0: Ashi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: Mera favorite word of a lifetime is WFH, work from home. And least favorite hai LDR, long distance relationship. Mere yaar, lekin agar aap ek long distance relationship mein ho, then I really want to know ki uske kuch fayde hai ya nuksan hai. Or if you look back at some long distance relationship, what was your takeaway from it? उसके बारे में बताने के लिए आप मुझे हिट अप कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर. मेरा नाम दोनों में ही सेम है, नाम है मिर्ची रोशी, काम है टू लव यू. मेरे साथ अभी लाइन पर है अरमान. अगर आपके पास है कोई एलडीआर स्टोरी मेरे यार, देन हिट मी अप इंस्टा पर या एफबी पर. लेट्स गेट टॉकिंग एंड फॉर द मोमेंट हेलो अरमान. हाय
3: हाय रोशी,
2: हाउ आर यू?
3: I'm good. How are you?
2: I'm very good. आपसे जब मैं बात कर रही थी ना, तो Instagram conversation on DM, तो मुझे लगा आप एक बहुत ही interestingly spicy किस्म के इंसान हैं.
3: सही पकड़े हैं एकदम.
2: हम अभी पकड़े कहाँ हैं जी? अच्छा तो क्या है आपकी LDR story?
3: तो रोशी actually ये बात है लगभग 2021 की, है ना? तो मेरा एक LDR था बैंगलोर में.
2: हाँ.
3: है ना, तो आपको पता ही कि 2021 में लॉकडाउन था.
2: हाँ, करेक्ट.
3: है ना, उसके लॉकडाउन के बाद जब लॉकडाउन थोड़ा सा लाइट हुआ, उसके बाद मुझे मिलने का मतलब जाने का मौका मिला बैंगलोर वैलेंटाइन्स वीक. फिर मैं वहां गया, हम लोग मिले काफी टाइम बाद, और कह सकते हो कि मतलब बहुत ही ज्यादा गर्माहट के साथ. है ना,
2: तो
3: फिर उसके बाद मैं वहां से वापस आया, और मेरे वापस आने के 2 महीने बाद मुझे मेरी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है कि शी इज प्रेग्नेंट.
2: वाओ, फिर
3: इसके बाद मैं 2 महीने में शादी कर ली.
2: वाओ, सो क्यूट. तो अब आपकी एक छोटी सी या छोटा सा बेबी भी होगा.
3: रोशी, मैंने उससे शादी नहीं की थी.
2: व्हाट इवन?
3: मैंने किसी और लड़की की शादी कर ली.
2: भाई, तू किस तरह का इंसान है? लड़की तुझे कह रही है दैट शी इज कैरिंग योर बेबी और तू किसी और से कैसे शादी कर सकता है? उसके बिहाफ पे मुझे गुस्सा आ रहा है.
3: हो गया बस. अब
2: एक सेकंड, तो आपने उसे क्या कहा? डिड शी गो अहेड एंड हैव दैट बेबी? नहीं, उस रिलेशनशिप का क्या हुआ?
3: सबसे पहले तो मैंने उसे कहा कि देखो अब्बा नहीं मानेंगे. और बस बेबी की अगर बात हो तो बेबी उससे भी नीचे था और मुझे भी नीचे था. हम कह सकते हैं कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर है ना, म्यूचुअल डिसीजन लेकर हम दोनों अलग अलग हो गए. और हाँ, उसके कॉल्स मुझे आज भी आते हैं.
2: When you're married to somebody else.
3: हाँ.
2: और फिर
3: क्या, मैं कॉल पिक नहीं करता हूँ. यार अब हो नहीं पाएगा ना.
2: मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं आपको नोटिफाई करना चाहती हूँ कि नहीं, बिकॉज यू आर क्रेजी क्रेजी स्टोरी. लेकिन हाँ, क्योंकि ये इतनी क्यूट एंड पोस्ट लॉकडाउन स्टोरी, आपको रोशिफाई कर दूँ.
3: मैं कर दूँ आपको?
2: यार मैं ना आपको रोशिफाई कर रही हूँ.
4: You've been roshified.
2: और कट रही हूँ इस कॉल से.
3: थैंक यू सो मच.
2: इट वाज सो नाइस टॉकिंग टू यू और मे बी नॉट. मेरा नाम है मिर्ची रोशी एंड अगर आपके पास है ऐसी कोई भी स्टोरी, देन हिट मी अप ऑन इंस्टा या एफपी. वी विल गेट टॉकिंग. अब आप मुझे रोशिफाई करोगे, इतने बड़े हो गए हो आप. ऑन दैट नोट, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची it's hot।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक कॉल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं, ये का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करें, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। फुल एंटरटेनमेंट है यार, 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर, आए @ मिर्ची जीतूराज, समझे कि नहीं समझे, सही है।
0: साथ जीतूराज Only on Mirchi, it's hot.

आप एक ऐसे इंसान हो जिसे नॉटी तो होना है लेकिन मेहनत नहीं करनी है, देन यू आर डेफिनेटली वन ऑफ माई एक्स बॉयफ्रेंड्स, बट दैट्स नॉट द पॉइंट. आपके जैसे लेजी इंसान के लिए मार्केट में एक नई आइटम आई है, एंड व्हेन आई सॉ इट आई वाज लाइक, आर यू फॉर रियल? ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं इस दुनिया में और बिक रही हैं भाई, हर घंटे ऐसे 6-6 प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द डाइस, ओके, जिसके साथ हम जो भी खेलते हैं यार, लूडो वूडो, वो डाइस जिसमें एक साइड पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट्स बने होते हैं. एक्सेप्ट इस वाले नॉटी डाइस में ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें पोजीशंस लिखी होती हैं कि आपको क्या करना है. तो आप और आपके पार्टनर इतने लेजी हो कि थोड़ी सी मेहनत करने के लिए तैयार हो, बट यू आर नॉट रेडी टू लाइक एक्चुअली गो इन एंड फिगर आउट कि नॉटी कैसे होना है, कब होना है, किस पोजीशन में होना है. डाइस लो, उसे जमीन पर फेंको और वेर एवर मैट्रेस पे फेंको, एंड वट एवर द पोजिशन दैट डाइस सेज, उसी तरह से आप और आपकी पार्टनर नटी होंगी. बहनों और भाइयों, कम टू थिंक ऑफ इट, इट इज़ वेरी एक्साइटिंग एंड एडवेंचरस कि भाई पता ही नहीं है कि अब क्या होने वाला है, अगले 10 मिनट में आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है. बट स्टिल आई फील दिस इज़ अ टैड बिट लेजी. लेकिन अब आप मुझे बता ही दो, क्या आप वो इंसान हो जो ये डाइस खरीदोगे, हाँ या ना? वट एवर योर आंसर इज, आई वॉन्ट टू नो अबाउट इट. बाउजी, मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर, वट एवर यू डू, एंड वाइल यू डू वट एवर यू डू, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची ए थॉट.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: वो एक हॉरर मूवी थी, ठीक है? यू आर सपोज टू गेट स्कैर्ड, और इफ यू आर नॉट गेटिंग स्कैर्ड, चुपचाप बैठ के दूसरे इंसान को पिक्चर देखने देनी चाहिए. लेकिन उस बंदी ने नहीं किया, तुझे पता वो मुझे कार्डल कर रही थी. शी वाज ट्राइंग टू किस मी इन द मिडल ऑफ अ हॉरर फिल्म. कौन करता है ऐसे? आई डोंट थिंक आई कैन सी हर एनी मोर. भाई मेरे भाई का ये लेजिट रीजन था लास्ट ईयर. ही मेट दिस रियली क्यूट गर्ल. हमें लग रहा है बंदी 10/10 है, लेकिन करण केम बैक फ्रॉम अ मूवी विद हर. एंड करण को वंस इन अ वाइल हॉरर फिल्म्स देखना पसंद है. ही वाज लाइक, यार ये बंदी हॉरर फिल्म्स में इतनी बैडली बिहेव थी, मैं इस बंदी को डेट नहीं कर सकता, नहीं करूंगा, सिंपली बिकॉज शी डजंट नो हाउ टू कंडक्ट हरसेल्फ इन अ सिनेमा हॉल. ना वाज लाइक, हाँ ठीक है खड़ूस, बट आई वाज जस्ट थिंकिंग टू माई सेल्फ, आपने कभी किसी के साथ ब्रेकअप किया है फॉर द स्टूपिडेस्ट स्ट्रेंजेस्ट रीजन, लेकिन आपके दिमाग में दैट रीजन वॉज 100% वैलिड फॉर डंपिंग दैट पर्सन? अगर हाँ, then I mean I hate to be judgmental, but you're crazy as my brother. And hit me up with your story Morning Glory Insta par ya FB par. Mera naam hai Mirchi Roshi, naam ke spelling hai Rochie. Waiting to hear your crazy breakup stories. And on that note, kahin mat jana, kyunki wapas to yahi hai aana. Sunte raho Mirchi, it's hot.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: हमारे पास एक कन्फेशन है और उसके लिए हम मिस्ट्री कॉलर भी नहीं कहलाना चाहते हैं। वाह वाह वाह वाह।
3: द सीक्रेट बॉक्स।
2: इसे कहते हैं द मैन विद सम गुर्दा ऑन हिम। सो आई एम गोइंग टू कॉल लक्ष्य, लेकिन अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसी ही कोई सीक्रेट कन्फेशन है, आई प्रॉमिस आई विल कॉल यू माय सीक्रेट कॉलर और माय मिस्ट्री कॉलर। यू चूज द नेम बट द गेम रिमेन्स द सेम, कि मैं आपको नॉन जजमेंटल कानों से सुनूंगी मेरी जान। सो हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB विद योर कन्फेशन। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE और मेरे साथ लाइन पर लक्ष्य है। हेलो।
4: हाय रोशी।
2: हाय लक्ष्य, आपने मुझे पहचाना कैसे? लेकिन लेकिन आई कांट हियर योर वॉइस, इतनी माइल्ड है आपकी आवाज़, थोड़ा सा ऊंचा बोलोगे?
4: या मे बी देयर सम नेटवर्क
2: इश्यू। नेटवर्क नहीं है, आप धीरे बोलते हो।
4: नहीं नहीं,
2: हाँ हाँ, अब तो सही बोल रहे हो आप। क्यों इतने दुखी साउंड कर रहे हो, क्या हो गया आपकी जिंदगी में?
4: नहीं दुखी ऐसा कुछ नहीं है, दुखी वाले सिचुएशन नहीं है एक्चुअली, बस एक टाइप कन्फेशन था।
2: कन्फेशन? कन्फेशन सुनने के लिए तो मैं हमेशा बेकरार रहती हूँ। क्या कन्फेशन है आपका, बताना जरा।
4: Actually, I'm studying in a college in Delhi right now.
2: Huh.
4: So last year, जो मेरी क्लास में एक फ्रेंड है जिशा, तो उसकी बर्थडे पार्टी पे उसके घर पे गए थे, वहाँ पार्टी थी। तो जस्ट नॉर्मल ड्रिंक्स वगैरह हुए वहाँ पे। तो जब पार्टी ओवर होने वाली थी तो काफी
0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
5: अब मिर्ची खा।
0: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची it's hot।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने ये सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौज है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक और त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो ये का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जब धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगा है कि ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @ मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: साथ जीतूराज। Only on Mirchi, it's hot.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: टूथब्रश भी तो लोनली होता होगा ना, तो पेयर इट अप एक टूथब्रश के साथ एक और टूथब्रश डाल दो, सारा दिन सारी रात अकेला टूथब्रश। ये सब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि फेंगशुई के हिसाब से अगर आप अपने कमरे और बाथरूम में चीज़ों को डबल कर देते हो तो इट क्रिएट्स पार्टनर एनर्जी। मैंने अपने सिंगल भाई को यही बात बताई तो वो अपने लिए चार टूथब्रश, चार साबुन, चार पिलोज, चार कुशंस ले आया। शायद वो चार पार्टनर्स चाहता है या फिर उसकी मैथ बहुत खराब है, पर वट एवर द सिचुएशन इज, द मोर द मैरियर, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि अगर आपने अपनी जिंदगी में अभी तक कुछ ऐसा काम नहीं किया दैट विल अट्रैक्ट अ पार्टनर इनटू योर लाइफ एंड यू आर टू लेजी टू डाउनलोड अ डेटिंग ऐप, शायद ये फेंगशुई टिप माइट बी द थिंग दैट हेल्प्स यू। इसे ट्राई करके देखो एंड आई हैव अ फीलिंग आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा ये। एंड वंस इट वर्क्स फॉर यू, थैंक यू बोलना मत भूलना इंस्टा पर या एफबी पर। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। एंड यू नो व्हाट आई ऑलवेज से अबाउट लव, जिसके पास लव है उसके पास सब है। एंड आई लव यू लोड्स।

0: ਸੱਜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਦਾ ਲੈ ਲਾ
1: ਮਰ ਜਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਭੰਗੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।
1: ओ कुड़ियो गुड़ किने खा लिया, गुड़ वाली चाह किने पीती, बुआ जी दा नाड़ा किने खिचे।

0: साथ जीतू राज उंगली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, वह जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक कॉल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो है। ये का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जो धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगा है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमार कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है।
0: Only on Mirchi, it's hot.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियास नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मुझे नहीं पता कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, बट मुझे तो इन दोनों को देख के बहुत मजा आया. आई थिंक द एंटायर इंडिया लव्ड इट. पुरानी जीन्स पे हेलो वेलकम, दिस इज मी श्रेया. और रोज मैं एक फिल्म के बहुत सारे किस्से कहानियां लेकर के आती हूँ. आज जो फिल्म है वो डिम्पल कपाडिया की कमबैक फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म की वजह से उन्होंने एक और बेहतरीन फिल्म छोड़ी थी, बिकॉज शी हैड ऑलरेडी गिवन डेट्स फॉर दिस फिल्म. अब ये कौन सी फिल्म थी बताओ बताओ. आफ्टर 14 इयर्स बॉबी के बाद जब उन्होंने ये फिल्म की, उनका हीरो भी सेम था, लेकिन सिर्फ एक हीरो नहीं था इस फिल्म में, दो हीरोज थे. अब इससे ज्यादा क्लूज नहीं दे सकती हूँ, सोच के रखो, मैं गानों के उस पार बताती हूँ आपको. पुरानी जीन्स पे दिस इज मी श्रेया, यू आर लिसनिंग टू मी ऑन ऑफकोर्स मिर्ची, इट्स हॉट.

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ये फिल्म पहले गई थी डिम्पल कपाडिया के पास और उन्होंने मना कर दी। इसलिए मना कर दी क्योंकि वो ऑलरेडी सागर को साइन कर चुकी थी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वन फिल्म दैट वी ऑल लव्ड, वन फिल्म जिसमें हमें श्रीदेवी बहुत बहुत पसंद थी, बताओ कौन सी? सदमा। वो फिल्म जिसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं नहीं देख पाती, अगर किसी भी चैनल पे आती है ना मैं नहीं देख सकती, बिकॉज उसका क्लाइमैक्स शेक्स मी। सो वो ना मुझे एक अच्छे खासे हैंगओवर में छोड़ के जाता है, तो मैं नहीं देखती हूँ। लेकिन ये फिल्म क्रिटिकली अक्लेम फिल्म जिसने श्रीदेवी के करियर में सबसे बड़ा बदलाव लाया और उसके बाद से उनको हिंदी फिल्में और ज़्यादा मिलने लगी थी। अब सदमा पहले गई थी डिम्पल कपाटिया के पास, बट डिम्पल कपाटिया ऑलरेडी एग्जैक्ट वही डेट्स दे चुकी थी सागर को, तो शी डिनाइड डूइंग द फिल्म। नाउ इन अ वे इट वाज गुड बिकॉज हमें श्रीदेवी द वेटरन एक्ट्रेस भी एकदम अलग ही अवतार में देखने को मिली, है ना। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, सागर की बातें हो रही आज, तो बस इस फिल्म के गाने भी होंगे। ऑल यू गॉट टू डू इज सिट बैक एंड रिलैक्स, कहीं भी मत जाना। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ये वाला सीन तो मतलब पूरा इंडिया नहीं भूल सकता। पुरानी जीन्स पे है आप श्रेया के साथ, और सागर की बात हो, डिम्पल कपाटिया का ये सीन की बात नहीं हो, ये कैसे हो सकता है? वेल, द फ्लीटिंग टॉपलेस सीन जो उन्होंने किया, जब एक गाना शूट होता है और उनका जो टॉप है वो चट्टान में फंस जाता है, एंड शी सडनली गेट्स अप एंड तो सागर की बातें करते करते इस फिल्म के सारे किस्से जो हैं वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी, क्योंकि देखो भाई मैं अपना होमवर्क बहुत अच्छे से करके आती हूँ। अच्छा, इस फिल्म में इवन दो ऋषि कपूर वॉज द मेन कैरेक्टर, फिर भी ही वॉज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड। क्यों? उसके पीछे एक मेजर रीजन था। रीजन तुम्हें तो बताइए, मैं ऐसे नहीं बताती हूँ, कभी कभी आपको ऐसे सस्पेंस में छोड़ के जाने में मुझे बड़ा मजा आता है। तो गाने सुन करके वापस आओ, अभी शेयर करूंगी। दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बाद देखल बे ना इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं ये का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां भूलना मत, हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ऋषि कपूर इसलिए डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि उनको लगा था कि ये जो फिल्म है ये बॉबी के फेमस होने के बाद, पॉपुलर होने के बाद, हिट होने के बाद आ रही है. इसमें डिम्पल कपाडिया और ऋषि कपूर की केमिस्ट्री जो है वो एकदम बॉबी जैसी रिपीट होगी, विच डिड नॉट हैपन. ही एक्चुअली अक्यूज द डायरेक्टर रमेश सिप्पी, उन्होंने बड़ी सारी फिल्म मैगजीन्स में उस टाइम पे इंटरव्यू दिया कि उनके कैरेक्टर को और ज़्यादा डिटेल में दिखाया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि रमेश सिप्पी फोकस्ड मोर ऑन शोइंग यू नो द कमबैक ऑफ डिम्पल कपाडिया. इस चक्कर में उनका कैरेक्टर साइडलाइन हुआ और ही डिड नॉट गेट द लॉरल्स फॉर द फिल्म. इट वॉज डिम्पल. पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ एक आर्टिस्ट भी आए थे इस फिल्म के प्रीमियर पे. वो कौन थे और कितने अलग ढंग से वो आए थे ये इंटरेस्टिंग बताऊंगी वापस और श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

उस समय के अखबारों की ये सबसे बड़ी खबर हुई थी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ और आज बात हो रही है सागर की। इट वॉज अ कमबैक फिल्म डिम्पल कपाडिया की। 14 साल के बाद वो फिर से कैमरा फेस कर रही थी, मतलब बॉबी करके वो काका यानी राजेश खन्ना के साथ बस शादी में सेटल हो गई थी और उसके बाद उन्होंने फिल्म को टाटा बाय बाय कह दिया था। आफ्टर 14 ईयर्स She made a comeback with the film, of course, Sagar, and Ramesh Sippy was directing the film. अब जब इस फिल्म का प्रीमियर रखा गया तो उसके मेन हीरो फिल्म के लीड्स यानी ऋषि कपूर या फिर कमल हासन नहीं थे, बल्कि पता है कौन थे? एम एफ हुसैन साहब, द रिनाउंड पेंटर एम एफ हुसैन साहब। वो इस फिल्म का प्रीमियर बेयर फुट, नंगे पैर देखने आए थे और फिल्मी मैगजीन्स ने, न्यूज़पेपर ने बड़े बड़े आर्टिकल्स इस पे लिखे थे। पुरानी जीन्स पे आज इसी फिल्म की बातें विद मी श्रेया। वापस आओ और भी करेंगे।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: सुनो अरे सुनो सुनो ए भाई और बहनो, अरे मदगन भाई छगन भाई सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघोबा ओ धोंडीबा आई का ओ आई का, ओ जरनल सिंह ओ जरनल सिंह।

कहते तो ये भी हैं कि उस समय रमेश सिप्पी एंड डिंपल कपाटिया दोनों का अफेयर हुआ था ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द फिल्म। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ सागर फिल्म की बात हो रही है, एक ऐसी फिल्म जो 14 साल के बाद फिर से डिंपल कपाटिया को बड़ी स्क्रीन पे दिखाने वाली थी, क्योंकि उससे पहले तो डिंपल कपाटिया ने बॉबी की और मेजर हिट हुई, स्मैशिंग हिट हुई एट द बॉक्स ऑफिस, लेकिन फिर वो राजेश खन्ना के साथ शादी करके सेटल कर गई और फिर उसके बाद रमेश सिप्पी की इस फिल्म से उन्होंने कमबैक किया। अब सिप्पी साहब और डिंपल कपाटिया का अफेयर हुआ और इसके बारे में सबने जम करके लिखा। रमेश सिप्पी चाहते थे कि डिंपल कपाटिया सागर फिल्म करें और ना कि सदमा करें, सदमा भी उनको ऑफर हुई थी और भाई डिंपल कपाटिया ने हाँ कह दी। इस बात को लेकर के भी फिल्मी मैगजीन्स ने बहुत कुछ लिखा था। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, आज इसी फिल्म की बातें बैक टू बैक इस फिल्म के गानों के साथ भी, तो बस वापस आओ

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: only on Radio Mercy New York. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

ऐसा बहुत कम बार होता था उस टाइम पे, क्योंकि एक्टर्स के बीच में ना बहुत राइवलरी होती थी। जब एक एक्टर दूसरे एक्टर की खुल करके तारीफ करे, और कमल हसन ने सागर फिल्म में ये ऋषि कपूर के लिख किया। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म सागर टुडे। वेल, कमल हसन ने ऋषि कपूर की जम करके ऑन स्टेज तारीफ की। उन्होंने कहा कि उन्होंने इतने एक्टर्स को देखा है, इतने एक्टर्स से मिले, लेकिन ऋषि कपूर एक्सट्रीमली हैंडसम, एक्सट्रीमली गुड लुकिंग है। एंड ही ऑल्सो वेंट ऑन टू से कि ऋषि कपूर को खुद नहीं पता है कि वो कितने कमाल के लगते हैं, और लोगों का दिल, लड़कियों का दिल वो कैसे चुरा लेते हैं जैसे ही ऑन स्क्रीन आते हैं। वैसे कमल हसन इस फिल्म के लिए दो कैटेगरीज में फिल्मफेयर अवार्ड्स की नॉमिनेट हुए थे। कौन सी थी वो दो कैटेगरीज और किसके लिए जीते? आई विल लेट यू नो, कम राइट बैक। मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची
1: पर साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, वह जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक कॉल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो। हैं ये का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां भूलना मत, हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जो धमाल करें, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमार कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
1: जीतूराज। Only on Mirchi, it's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

कमल हसन गॉट नॉमिनेटेड इन बोथ द कैटेगरीज। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, सागर फिल्म की बात हो रही है और कमल हसन को ना दोनों कैटेगरीज में नॉमिनेशन मिला था इन फिल्म फेयर। ही गॉट नॉमिनेटेड इन द बेस्ट एक्टर कैटेगरी, ऑल्सो इन द बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी, और जीता किसमें उन्होंने? बेस्ट एक्टर। मतलब ये तो एक्चुअली में विन एंड विन सिचुएशन थी कि भाई एक्टर भी हैं, सपोर्टिंग एक्टर भी हैं, एक ना एक अवार्ड तो उनके नाम होना ही था। बट यस, इट वेंट टू बी बेस्ट एक्टर वाली कैटेगरी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, अभी इस फिल्म के गाने शुरू करते हैं। कम राइट बैक।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

बैक टू बैक एक्शन फिल्मों के बाद रमेश सिप्पी साहब को लगा कि भाई मैं भी प्यार में हूँ तो कुछ प्यार भरा बनाए। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म सागर टुडे। वेल, रमेश सिप्पी साहब ने ना 3 फिल्में बैक टू बैक बना डाली थी एक्शन की, यानी शोले में 1975, वेल देन शान हैपेंड इन 1980, उसके बाद उनकी तीसरी फिल्म थी शक्ति 1982, और ये तीनों सुपर डुपर हिट फिल्म थी। बट कहते हैं कि सागर के टाइम पे रमेश सिप्पी वॉज इन लव, वॉज हैविंग एन अफेयर विद डिम्पल कपाटिया, एंड ही वॉन्टेड टू शो डिम्पल जी इन यू नो इन अ रोमांटिक एंगल, एक ऐसी फिल्म जिसमें रोमांस दिखे। तो उन्होंने इन तीनों एक्शन फिल्मों के बाद डिम्पल कपाटिया और दो हीरोज के साथ बनाई थी सागर, विच वॉज अगेन अ स्मैशिंग हिट। वेल, इसी फिल्म का गाना आपके लिए Only on Purani Jeans, you're listening to me on Mirchi. It's hot.

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म सागर टुडे। 14 इयर्स के बाद जिस फिल्म से अपना कमबैक किया था डिंपल कपाटिया ने। अच्छा, फिल्म की बातें तो बहुत सारी होती रहेंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ आप इस समय ये सुनो। और इसमें पंचम दा का ये गिटार है शायद, ये जो इस गिटार को वो स्ट्रम कर रहे हैं, अभी बड़ा खूबसूरत सा एक पीस आएगा, वो भी सुनिएगा। आर डी बर्मन साहब के कॉम्पोजिशन, जावेद अख्तर साहब के लिखे हुए ये लाइन, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। कमिंग अप राइट नेक्स्ट, डिंपल कपाटिया की आंखों पे लिखा गया था ये गाना।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज न्यूज।

0: only on Radio Mercy New York. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

पुरानी जीन्स पे अब श्रेया के साथ सागर फिल्म की बात हो रही है और अगला गाना ये ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। सो इस गाने में डिंपल कपाटिया इज वेयरिंग वेरी ब्यूटीफुल ड्रेसेस। हाँ, पूरे गाने में उन्होंने ड्रेसेस पहनी है और सागर किनारे बहुत सिंपली शूट किया गया ये गाना। ऋषि कपूर और डिंपल कपाटिया की केमिस्ट्री तो वैसे ही बॉबी में हमने देख ली थी, एकदम पर्दे पे आग लगा देती थी इन दोनों की केमिस्ट्री। सो दे डिडंट हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ स्टेप्स, तो कैजुअली बस हल्का फुल्का डांस करते हुए एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल करके ये गाना जब आता है ना, सागर किनारे दिल ये पुकारे, ओहो हो। किशोर दा और लता जी के पास पंचम दा की ऑफकोर्स धुन है कमिंग अप राइट नेक्स्ट।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर साथ जीतू राज मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बात देखल बे ना इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौज है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर तो मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं ये का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां भूलना मत, हमार रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमार कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
5: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक फिर लो पान चबा। आहा। अरे

0: ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला।
1: पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ जाने का टाइम, यानी लेट्स हिट द हाईवे। Alright, आज का मेरा हाईवे हिट डेडिकेट करना चाहती हूँ उन लोगों को जिन्हें बादलों से थोड़ा डर लगता है, और बादल के गरजते हुए को वो एक एक्सक्यूज लेते हुए सामने वाले से चिपक जाते हैं। हाउ रोमांटिक। वैसे मेरी लाइफ में ये सिचुएशन नहीं आई। हमेशा मैंने ऐसी सीन्स को या ऐसे गानों को देख करके सोचा है ना कि कभी तो ऐसा होगा कि कोई बादल गरजेगा और कोई मेरे साथ ऐसा होगा जिससे मैं चिपकना चाहूँगी, बट इट हैज़ नेवर हैपेंड। बट एनीवे, आई विल कीप होपिंग कि ऐसा रोमांटिक सिचुएशन श्रेया की लाइफ में भी आए। ऑन दैट नोट, गुड नाइट, टेक केयर, आई विल सी यू टुमारो, एंड ख्याल रखो अपना। और मुझसे कुछ कहना है ना तो फेसबुक या इंस्टा पे आरजे श्रेया विद लव इज माई हैंडल, वहाँ पे बस DM कर देना।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची it's hot।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने ये सीरियल बात देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौज है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर तो मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है, कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक और त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं, ये का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जब धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगा है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @ मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है।
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का

चल चल चल चल चल चल तुझे बठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बंटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची it's hot।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने ये सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर तो मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है, कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक कॉल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं, ये का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जब धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगे कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @ मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: साथ जीतूराज। Only on Mirchi, it's hot.

Radio Mirchi, New York. It's hot.

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: Energy. It's hot.
1: भारतवर्ष की पुण्य धरा पर गंगा मैया के अवतरण की ये कथा गंगा जल की ही भांति पावन और मनभावन है। गंगा अवतरण की ये कथा न केवल कानों में रस घोलती है बल्कि आत्मा को भी तृप्त करती है। तो सुनिए कैसे हुआ पतित पावनी गंगा माँ का धरती पर

राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जब कपिल मुनि के आश्रम में पाया गया तो राजा के 60,000 पुत्रों ने आश्रम में धावा बोल

राजा भगीरथ की कठिन तपस्या से ब्रह्मा ने धरती पर गंगा के अवतरण का वरदान दिया और ब्रह्मा के वरदान को भगवान शिव ने भी सिर माथे पर धारण किया। भगवान विष्णु के श्री चरणों का ये गंगा रूपी चरण

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: बच्चों के साथ खुशी के कुछ पल बिताना क्यों जरूरी है, आइए जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: शायद पापा के टाइम अलग है, मम्मी का टाइम अलग है, बच्चे का टाइम अलग है, तो एक बार एक मील भी नहीं हो पाता, या वो बच्चा बोलता मुझे खाना ही नहीं है, या पापा बोलते हैं अच्छा मैं बिजी हूँ, मैं आ रहा हूँ, तो आपका काम इम्पोर्टेंट रहे है, और जब हम बोलते हैं हम आ रहे हैं तो फिर वो ठीक नहीं है। तो इन सब झगड़ों के बीच में क्या होता है, जो साथ में मिलके चाहे वो बातचीत ही हो या खाना ही हो, वो भी नहीं हो पाता।
4: A journey of 1000 miles
3: is taken by one starting with one step.
4: So, the first step is to have hope. कितनी बार हम कहते होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, होता पहले ही देखो हमारा मन क्या होता है, होता ही नहीं है, घर में भी नहीं हो सकता, हर एक के टाइम अलग है। 100% आज आप शुरू करेंगे ना तो नहीं होगा। आज आप कोशिश करेंगे, आज सब बैठ करके मिलेंगे, कल एक नहीं होगा, परसों दूसरा नहीं होगा, द मोमेंट आप ये करते जाएंगे और वो कॉन्वर्सेशंस एंटरटेनिंग होने लगेंगे, उस कॉन्वर्सेशंस में प्राप्ति होगी, आपको मजा आएगा, यू विल नॉट मिस इट।
3: हाँ।
4: जब तक आपको उसमें से कुछ मिल ही नहीं रहा है, आज तीन जने बैठे, चार की फैमिली, एक नहीं आया, बाद में उसको पता चला अरे आई मिस्ड इट, वो तो बहुत अच्छा था, यस्टरडे वी हैड लॉट ऑफ फन, हमने ये किया, हमने ये किया, तो अगली बार उसको लगेगा ना नहीं आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस। तो आज भी कहीं घर है, संडे मिलेंगे, वीकेंड्स पे मिलेंगे, दिल एंजॉय टुगेदर, लोग सबको छोड़ करके भी उस गैदरिंग का पार्ट क्यों होते हैं, बिकॉज दे गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट ना। अगर उसमें आपको कुछ मिले ही नहीं, वहाँ बैठ करके प्रॉब्लम्स डिस्कस हो रही है, वहीं बैठ करके शिक्षाएं दी जा रही है, वहीं बैठ करके उनको कुछ ना कुछ रिजेक्शन मिल रहा है, उस बच्चे को जो कुछ उसको कहना था स्कूल रिलेटेड, मार्क्स रिलेटेड, सब कुछ वहीं पर हो रहा है।
3: सही बात,
4: तो वो भागेंगे ही ना आपसे।
3: सही बात है,
4: क्यों उनको वो चीज टेक्नोलॉजी से मिल रही है और इंसान से नहीं मिल रही है। अगर उसको वो मिले, पेरेंट्स से मिले, टीचर से मिले, फ्रेंड से मिले,
3: तो
4: यू वुड प्रेफर दैट।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Shreya and Brahma Kumari, Sister Shreya, only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: एक सवाल आया कि मैं बार बार हर चीज को ओवर एनालाइज और ओवर थिंक करता हूँ, मैं इस आदत को कैसे रोकूं?
3: एनालाइज करना अच्छा है, ओवर एनालाइज करना अच्छा नहीं है। किसी भी चीज के बारे में ओवर थिंक करना फिर वो आपको या तो गिल्ट की तरफ ले जा रहा है, या डिसहार्टनमेंट मायूसी की तरफ ले जाएगा, या एंजाइटी की तरफ लेकर जाएगा, या फियर की तरफ लेकर जाएगा। जब आप कोई चीज को ओवर कर देते हैं, जैसे खाना भी है, आपने अगर ओवर खा लिया
2: तो उल्टी आ जाएगी।
3: अच्छा भी था, अगर बहुत अच्छा भी था, हेल्दी भी था, तो भी आप अगर उसको ज्यादा खाएंगे सो इट इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी। सो एनालाइज करना अच्छा है, रिफ्लेक्ट करना अच्छा है, थोड़ा समय अपने साथ बैठना अच्छा है। ओवर एनालाइज हमेशा नेगेटिव दिशा में जाता है।
2: अब वो हो रहा है तो उसको रोके कैसे?
3: अगेन, अगर हमने ज्यादा खा लिया है तो क्या करें?
2: पहली बात तो खाना बंद करें और फिर पचाने की कोशिश करें, एक्सरसाइज करें।
3: जैसे बॉडी के लिए जरूरी होता है, मैं कई बार ये चीज कहती हूँ कि आप अंधेरे को नहीं निकाल सकते, अगर आप लाइट करेंगे तो अंधेरा निकल जाएगा। तो जब अगर आप ओवर एनालाइज कर रहे हैं और ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ये अंधेरे की तरह हो जाता है। जो कहते हैं कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ सूझ ही नहीं रहा, नाउ टेक हेल्प। कुछ आप ऐसे नरिशिंग थॉट्स अपने को दें, कोई सत्संग है, कोई ज्ञान है, समबडी हु इज लिटिल मोर एम्पावर्ड एंड हैज लिटिल मोर विजडम, स्पेंड टाइम विद देम, दे माइट बी एबल टू गिव यू सम डायरेक्शन। कभी कभी हेल्प लेनी पड़ती है।
2: बहुत अच्छी बात।
3: अगर हम खुद को हेल्प नहीं कर पाते तो किसी ऐसे की हेल्प लें जो आपको थोड़ा पर्सपेक्टिव दे सके।
2: वेरी नाइस। और ऐसे ही दो तीन सवाल और थे तो मेरे ख्याल से जवाब मिल ही गया।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: एक अच्छा दोस्त हमारी लाइफ को बेहतर और कंप्लीट कैसे बनाता है, आइए समझें इसे।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: एक चीज, जब मैं इन ग्रुप ऑफ बच्चों से बात कर रहा था, अलग अलग भी कर रहा था, साथ में भी कर रहा था, तो एक ने तो ये भी कहा कि मुझे फ्रेंड्स बनाने में दिक्कत है, मैं जानता हूँ और मैं नहीं बनाना चाहता, और जिस दिन मेरे बनने होंगे बन जाएंगे, लेकिन मेरी जिंदगी में दूसरी प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या भाई, इतनी छोटी उम्र में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? कहते हैं मेरे पेरेंट टीचर मीटिंग हुई, मेरे पापा ने आके मेरे टीचर को बोल दिया फ्रेंड्स नहीं बनाता, आप जरा इसका ध्यान दीजिए। तो अब उल्टा प्रेशर, मेरी टीचर बोलती कोई बात नहीं मैं बनवा दूंगी, अरे मुझे नहीं बनाने फ्रेंड्स। तो मुझे उस समय तो हंसी आ रही थी, सब हंस रहे थे, बट आई थिंक दे आर फेसिंग एन इशू जहाँ पे वो कह रहे हैं हम अब धीरे धीरे बड़े हो गए, लेकिन हमें बड़े के कैटेगरी में आप नहीं डाल रहे, ना छोटे के कैटेगरी में डाल रहे हो, हम बीच में कहीं फंसे हुए हैं, हम अपने डिसीजन ले नहीं पाते, लेकिन आप हमारी तरफ देख नहीं रहे, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी बात हमसे कोई नहीं कर रहा।
5: सी, हर चाइल्ड की प्रॉब्लम अलग होती है। आई मेट समबडी हु वाज अफ्रेड ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स, पर उसका कारण अलग था। ही वाज समबडी हु वाज गोइंग थ्रू सम इश्यूज, और इसलिए वो बच्चे उसको बहुत टीज करते थे। काफी प्रकार के बुलिंग होती थी, काफी शब्द सुनने को मिलते थे। सो उसके मन में क्या इमेज है, फ्रेंड्स इक्वल्स टू हर्ट।
4: सही बात है, तो फिर बनाने ही नहीं है।
5: मेरे को बनाने ही नहीं है ना, मैं कंफर्टेबल हूँ,
4: बिल्कुल,
5: मैं अपने म्यूजिक में, मैं अपने फुटबॉल में, मैं
4: खुश हूँ,
5: मुझे मजा आती है उसके अंदर। ये बच्चों के साथ मिलना मना हर्ट,
4: बिल्कुल,
5: तो उसको तो सोशल एंजाइटी नेचुरली होगी ना। मेरे बच्चे चलने के तरीके पे हंसी उड़ाते हैं, मेरे बच्चे पहनने के तरीके पे हंसी उड़ाते हैं। दैट इज व्हाई इनिशियली आई सेड फ्रेंड्स क्यों चाहिए। फ्रेंड्स माना एक्सेप्टेंस,
4: बिल्कुल,
5: टोटल एक्सेप्टेंस, नो मैटर हु यू आर, व्हाट यू आर, व्हाट यू लाइक, व्हाट यू वेयर, व्हाट यू ईट। आप उसको भी अगर रिजेक्ट करते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं या मजाक उड़ाते हैं, क्यों चाहिए मुझे फ्रेंड, आप खुद ही बताओ। फिर मुझे ऐसा फ्रेंड तो हर्ट दे रहा है ना। इसीलिए एक दोस्त भी होना, दो भी होना, अच्छे होना, जो आपको जज नहीं करते, जो आपको क्रिटिसाइज नहीं करते, जो आपकी सफलता को देख करके जेलस नहीं होते,
4: बिल्कुल,
5: जो आपको गलत कर, आप गलत कर रहे हैं तो आपको बोलने में भी हिचकिचाते नहीं।
4: हाँ, बिल्कुल, वो इक्वल है।
5: मतलब वो आपको कह सकते हैं आप रूड थे, यू शुड हैव बीन पोलाइट।
4: हाँ, बिल्कुल,
5: मतलब वो आपके हर चीज में हाँ में हाँ नहीं मिलाते, व्हेन यू आर रॉन्ग तो वो आपको बताने में भी बता सकते हैं। सो दैट इज व्हाट आई वुड से इज अ गुड फ्रेंड।
4: एब्सोल्युटली,
5: हैविंग वन गुड फ्रेंड इज बेटर देन हैविंग 1000 फ्रेंड्स।
4: आई थिंक शोले में तो ये दोस्ती का जो गाना था बहुत अच्छा था, लेकिन आनंद फिल्म में बहुत खूबसूरत गाना है, और वो कहते हैं कि दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है, सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है, उम्र भर दोस्त लेकिन साथ चलते हैं। तो दोस्त होना बहुत खूबसूरत चीज है, एंड इफ यू कैन एक्चुअली डिस्कवर अ गुड फ्रेंड, नेवर लीव देम।
5: ट्रू फ्रेंड्स, दैट इज व्हाट आई सेड, ट्रू फ्रेंड विल नॉट डिसरिस्पेक्ट यू, विल नॉट एक्सपेक्ट सो मच फ्रॉम यू, ट्रू फ्रेंड एक्सेप्ट करता, एक्सेप्टेंस इज द कीवर्ड।
4: जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: एक सवाल आया है, कहूं दुर्गा गुप्ता, मेरी समस्या ये है कि मेरे दिमाग में हर समय कुछ ना कुछ थॉट चलते ही रहते हैं, तो ओवरथिंक करता हूँ।
3: सी, ओवरथिंकिंग एक बीमारी की तरह बहुत तेजी से फैल गई है। अब वो कहते दिमाग में कुछ ना कुछ चलता है, वो तो चलेगा ही ना। मन एक फैक्ट्री की तरह है जिसका काम है थॉट्स क्रिएट करना। तो थॉट तो क्रिएट हो गई, आप उसको क्या कर सकते हैं, व्यर्थ को समर्थ कर सकते हैं
2: जी,
3: नेगेटिव को पॉजिटिव कर सकते हैं। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट यू कैन ट्रांसफॉर्म इट। लेकिन ट्रांसफॉर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको नरिशिंग थॉट्स लेने पड़ेंगे। तो जो बार बार हम एक चीज कह रहे हैं, जिसको भी ये प्रॉब्लम है ओवरथिंकिंग की, वो सिर्फ एक शिफ्ट अपने जीवन में लेकर आए, वो 20 मिनट्स का पॉजिटिव कंटेंट डेली कंज्यूम करना शुरू करें।
2: ये बहुत,
3: वो ओवरथिंकिंग कब खत्म हो जाएगी पता ही नहीं। ओवरथिंकिंग मतलब थॉट्स चल रहे हैं ज्यादा, जिनकी क्वालिटी ठीक नहीं है। जब आप पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम करेंगे तो आपको सोल्यूशन मिलेंगे।
2: बहुत बढ़िया।
3: जब वो सोल्यूशन मिलेंगे तो आपके थॉट्स ट्रांसफॉर्म होंगे, उनकी स्पीड कम हो जाएंगी, आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: बच्चों से बात करने का तरीका कैसा हो जिससे वो खुलकर आपसे अपनी बातें शेयर कर सकें, आइए इस बारे में जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: एक जब ये मजमा लगा दोस्तों के साथ, दोस्ती बन गए मेरे, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उनसे मैं पूछ रहा था भाई और क्या है, तो बोलते हैं कि अक्सर जब हम घर जाते हैं, क्योंकि हम फ्रेंड्स की बात कर रहे थे, पेरेंट्स की बात हुई, लंच टेबल की बात हुई, तो एक सवाल हमेशा आता है भाई हाउ इज योर डे, तो कहते हैं कि पहले मैं बता देता था और फिर सामने से लेक्चर में तुमको ये बोलना चाहिए था, तुमको ये करना चाहिए था, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं। तो उसने बोला कि मुझे लेक्चर की जरूरत नहीं है, तो मैंने बोलना ही बंद कर दिया कि अब मुझसे पूछते हैं हाउ वाज़ द डे, मैं बोलता नथिंग स्पेशल हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे पूछा जाता तुम्हारे घर और लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा, तुम्हारे स्कूल में कुछ भी नहीं हो रहा, तो वो कह रहे हैं कि इसका सही जवाब क्या है, क्योंकि लेक्चर मुझे चाहिए नहीं और बताना मुझे है नहीं, क्योंकि बताऊंगा तो लेक्चर मिलेगा, नहीं बता तो भी डांट पड़ रही कि अजीब बच्चे हो तुम यार, तुम्हारे स्कूल में कुछ नहीं होता।
4: अब ये तो पेरेंट्स को समझने की जरूरत है ना, इसीलिए आप देखिए जब बच्चा छोटा होता है तो सब कुछ बताता है।
3: जी बिल्कुल,
4: सब कुछ।
3: हाँ।
4: वो घर आते ही उसने क्या पहना था, वो लंच बॉक्स में क्या लाया था, मैंने क्या किया था, एंड सम टाइम पेरेंट इज नॉट इंटरेस्टेड आल्सो, बट ही और शी विल टेल एवरीथिंग। ग्रेजुअली वो बच्चे के ऊपर और बहुत इन्फ्लुएंसेस पड़ने लगते हैं।
3: जी।
4: इनिशियल फ्यू इयर्स में वो बच्चा अपने पेरेंट के रिफ्लेक्शन होता है, तो वो वही करता है और वो वही बोलता है जो आप सुनना चाहते हैं। तो उस बच्चे को भी आपसे, पेरेंट से बच्चे को प्यार और एक्सेप्टेंस मिलता है। 10 ईयर ओल्ड होगा, 12 ईयर ओल्ड होगा, कुछ तो इन्फ्लुएंसेस होंगे, फ्रेंड्स के होंगे, टीचर्स के होंगे, एंटरटेनमेंट के होंगे, सिनेमा के होंगे। अब वो बच्चा घर आके कहता है हाउ वाज योर डे, पेरेंट पूछता है टुडे वी बंक्ड क्लास एंड वेंट फॉर अ मूवी, उतने इनोसेंटली जैसे वो सब कुछ बता देता था कि आज हमने क्लास बंक करी, हम वो फिल्म देख कर आए। एज अ पेरेंट हम रिएक्ट कर देते हैं या लेक्चर देते हैं, तो क्या होगा, उस बच्चे को तो समझ में नहीं आया कि गलत क्या हुआ, सब गए थे मैं भी गया, इसमें क्या हो गया, ये तो सब करते ही हैं।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। प्रशांत अहमदाबाद से लिखते हैं सिस्टर कि कॉलेज लाइफ बहुत हेक्टिक हो गई है, इतने प्रेशर में खुद को खो ना दूं इस बात का डर लगता है।
2: अभी तो ऐसा हो गया, मॉडर्न लग्जरी है टू स्लीप डीपली, टू थिंक क्लियरली, टू वॉक स्लोली। ये एक लग्जरी जैसा हो गया।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि ये सारी चीजें दिक्कत देने लगी हैं आजकल।
2: फास्ट फास्ट फास्ट फास्ट है, और इसीलिए जो भी स्टूडेंट है एटलीस्ट उनको ये रियलाइज भी हो रहा है कि मैं अपने को खो रहा हूँ, क्योंकि डूइंग में जा रहे हैं ना, तो कभी कभी यही भूल जाता है कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरा पर्पस क्या है, मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है। आई जस्ट मेट अ स्टूडेंट फ्यू डेज बैक, उसका भी अभी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ है। शी सेड अभी मुझे ऐसा है कि मुझे MBBS करना है, फिर MD करना है, फिर समाज की सेवा करनी है। मुझे जो अंडर प्रिविलेज्ड है, जो नीडी है, उनकी हेल्प करनी है। कहते पर मेरे को डर लगता है कि कहीं ये कोर्स खत्म करते करते मेरा ही जो पर्पस है वो चेंज ना हो जाए, बीइंग वो जो इन्फ्लुएंस। इसलिए सबसे ज्यादा एक जो जरूरी चीज है फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, कंपनी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं वो बहुत जरूरी है। ऐसा संग चूज करें, ऐसी कंपनी चूज करें जो अपना मीनिंग ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ लाइफ न भूले, और उसको पकड़ करके फिर जो करना है वो करता रहे। सो यू विल नॉट फील डिस्कनेक्टेड विद योर सेल्फ। आपके वैल्यूज, आपके प्रिंसिपल्स, आपके पर्पस, आपके इंटेंट को इंटैक्ट रखते हुए आपको जो करना है करें। सो यू विल नॉट बी इन अ रेस, बट यू विल एंजॉय योर जर्नी।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: बच्चों को उनकी गलती कैसे समझाएं? एक प्यार भरे और जेंटल तरीके से. आइए इस बात को समझें.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया.
3: सी एज अ पेरेंट आपको उसको ये भी समझाना कि बंकिंग सही नहीं है, लेकिन उसको ये भी ऐसा एहसास नहीं दिलाना कि भाई तुम ये बात आके शेयर मत करो, शेयर भी करो तो क्या क्या क्या तरीका है सही?
4: पहले तो पेरेंट को समझना कि बंकिंग गलत है, बच्चा राइट है.
3: हाँ बिल्कुल.
4: व्हेन यू आर 13-14 और सब आपके क्लास में अगर कर रहे हैं
3: तो
4: आपके मन में भी ये थॉट आना कि मैं करके देख कर आता हूँ. एक एक्सपेरिमेंटेशन की एज होती है, आप सब कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं. ये अलग बात है कि आप पहले बता रहे हैं.
3: हाँ.
4: अगर आपको दो चार लेक्चर मिल जाएंगे
3: तो आप नहीं बताएंगे.
4: आप करेंगे तो फिर भी.
3: हाँ.
4: आप बताएंगे नहीं, विच इज बिकम्स मोर डेंजरस. यू विल नॉट स्टॉप डूइंग इट, प्लीज अंडरस्टैंड. सो एज अ पेरेंट उस बच्चे का ट्रस्ट विन करना बहुत जरूरी है. सो जो पहली लाइन होनी चाहिए, इट इज ओके. इस एज में इस प्रकार से थॉट आना या करने के दिल होना, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द चाइल्ड. लेक्चर में क्या होता है, आप गलत हो, हमारे घर का बच्चा ऐसे कैसे कर सकता है, हमारे संस्कार, हमारी
3: इस बात के पैसे देता हूँ क्या मैं.
4: या सो यू टेक इट वेरी पर्सनली.
3: तो बोलना
4: मेरा बच्चा
3: कि...
4: हाथ से निकलता जा रहा है, मेरी पेरेंटिंग.
3: तो बोलना है कि सही है, तुम सही हो, लेकिन उसके बाद क्या बोलना है.
4: उसके बाद जब हम उसको कॉन्फिडेंस में लेते हैं, कॉन्फिडेंस माना हम सच में फील करते हैं कि मेरा बच्चा राइट है, उसकी एज पे मुझे भी ये सब थॉट्स आते थे, तो एक रिश्ता बिल्डअप हो जाता है. जिस रिश्ते में उसको ये होता है कि हाँ मेरे पेरेंट्स मुझे समझते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, देन यू टेल दैट चाइल्ड कि लेकिन बंकिंग इज नॉट करेक्ट. फिर किसी दिन पकड़े जाएंगे, फिर उसके ये जो भी उसके रिजल्ट है या जो भी उसका नुकसान है, आप उसको बताएं. पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप एक ऐसा होता है, आई हैव सीन चिल्ड्रन नॉट डूइंग रॉन्ग बिकॉज दे डोंट वांट टू ब्रेक ट्रस्ट ऑफ देयर पेरेंट्स.
3: बिल्कुल सही, बिल्कुल.
4: जब आप किसी को ट्रस्ट करते हैं तो उसके ऊपर एक जिम्मेवारी आ जाती है. ट्रस्ट इक्वल्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो कहेगा मैं अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट नहीं तोड़ सकता. फिर आप उसको कहो आपको कुछ ट्राई करना भी है, आप मुझे बताओ, आप मेरी गाइडेंस में करो, विल डू इट टुगेदर, लेट देम एक्सपेरिमेंट अ लिटिल बिट. पर फोर्स नहीं करो, कंट्रोल नहीं करो, बिना पूछे नियम नहीं बनाओ. वो सब तोड़ेंगे और तो भी करेंगे. एंड अंडरस्टैंडिंग, बच्चा राइट है, बंकिंग इज रॉन्ग, स्मोकिंग अ सिगरेट इज रॉन्ग, एंड देयर कुड बी एंडलेस लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट इज रॉन्ग. बट माय चाइल्ड at that age, under all the influences, for him to have such a thought, he is not wrong. जब ये क्लियर हो जाएगा ना, वो रिश्ता आपका सेफ रहेगा.
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया. ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6-8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया. ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया.
3: आइए अब वक्त है आपके सवाल लेने का. उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी. सिस्टर विद्युत शाह का एक सवाल है कि क्या स्पिरिचुअलिटी हमारी असक्षमताओं को और असफलताओं को छुपाने का इजी तरीका है?
4: एब्सोल्युटली नॉट. उनको एक्सेप्ट करने का तरीका है और एक्सेप्ट करके उनको ट्रांसफॉर्म करने का तरीका है.
3: तो एक्चुअली हमको सक्षम बनाने का तरीका है और सफल बनाने का तरीका है.
4: स्पिरिचुअलिटी, आई डोंट नो व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, बट स्पिरिचुअलिटी आपको आपको एम्पावर करती है. तो फिर जो आपको करना है वो आप कर पाते हैं. कई बार क्या होता है, हम कुछ कर नहीं पाते तो हमें लगता है हम फेलियर है. हम फेलियर नहीं होते. आई एम नॉट अ फेलियर, आई एम नॉट इनएफिशिएंट, और इट इज जस्ट आई हैव नॉट टेकन आउट दैट टाइम टू वर्क ऑन माई सेल्फ. स्पिरिचुअलिटी आपको एम्पावर करती है.
3: आई डोंट नो ये किस मुद्दे से या मकसद से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, जो इंसान जिंदगी को आराम से ले रहा होता है या जो सहज मन से चलता है, जो शांत होता है, उसको वीक माना जाता है। तो कहीं ना कहीं शायद वो सवाल वहां से आ रहा होगा कि क्या ये हम अपनी असफलताओं को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं।
4: कई लोग ऐसा समझते हैं, ये भी एक आप बहुत अच्छा कह रहे हैं, इनफैक्ट कॉर्पोरेट शादी में भी कई बार टॉक होगा ना, तुमको कहेंगे आप इतना शांत नहीं कर देना इतना, सो समवेयर यू फील की स्पिरिचुअलिटी विल मेक यू वेरी कंटेंट इन लाइफ, फिर तो कोई डिजायर नहीं होगी, फिर आप भागेंगे नहीं, फिर आपके गोल्स नहीं होंगे। एक्चुअली वो पर्पस नहीं है। पर्पस क्या होता है कि हम अपनी जर्नी को एंजॉय कर सके। वैसे भी आप देखें, जैसे एक आप पहाड़ भी चढ़ते हैं तो आपको व्यू तो ऊपर से ही मिलता है, है ना, लेकिन जो आप बनते हैं वो चढ़ने से बनते हैं। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ी, आपने जो एंजॉय किया वो समिट पे जो आप जो व्यू है ना, वो बेसिकली रिजल्ट है, वो एक गिफ्ट की तरह है। तो देखने में लगता है कि इट इज द एंड गोल, बट जो आपको बनाता है इट इज ऑलवेज द जर्नी। सो स्पिरिचुअलिटी ऑलवेज फोकसेस ऑन द जर्नी कि मान अपमान है, निंदा स्तुति है, हार जीत है, सफलता असफलता है, इट इज ओके। हर चीज आपको ग्रो करती है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट गोइंग थ्रू इट, इट्स अबाउट ग्रोइंग थ्रू इट। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट चैलेंजेस, बट द चैलेंजेस आर द अपॉर्चुनिटीज for you to grow. तो बेसिकली वो आपको वीक नहीं बनाती, वो तो बहुत आपको स्ट्रांग बनाती है। इनफैक्ट जिस समय पर आप कोलैप्स कर सकते हैं उस समय पर भी आप बहुत स्टेबल खड़े होते हैं। लेटली आई मेट दिस सिस्टर, एक ट्रिप पे थी तो उन्होंने सुनाया कि वो स्पिरिचुअलिटी में उनको सिर्फ 4 months हुए थे चलते हुए। वो मेडिटेशन प्रैक्टिस करती है, क्लास करती है, और उनकी डॉटर थी जिसको अचानक हेडेक्स होने शुरू हुए।
3: अच्छा।
4: अब वो खुद भी डॉक्टर है, हस्बैंड भी डॉक्टर है, और एक ही डॉटर है 9th standard में।
3: अच्छा।
4: और पहले की बात सुना रही थी कि उसको काफी हेडेक्स हुए, उन्होंने काफी डॉक्टर्स को दिखाया, चेकअप कराया, डायग्नोस ही नहीं हो पाया क्या हो रहा है, सीवियर हेडेक्स पर डायग्नोस नहीं हो पा रहा। एंड शी सेड कि मैंने अपना जॉब छोड़ा क्योंकि उसको होम स्कूलिंग करनी पड़ी, वो स्कूल नहीं जा पाती थी। देन इट बिकेम सो सीवियर कि वो ब्रश करने गई और वहीं गिर गई, बेहोश हो गई, किसी को पता ही नहीं चला कि वो कर रही है। एंड दिस कंटिन्यूड फॉर 4 years. 4 years. She said we went to the best doctors इंदौर में, मुंबई में, everywhere, neurosurgeon, सब कुछ, पर डायग्नोस ही नहीं हुआ। 4 years के बाद वो एकदम खत्म हो गया।
3: अच्छा।
4: क्या बीमारी थी पता नहीं। Then she could go back to college. अभी वो भी अपनी मेडिसिन कर रही है। But she said वो 4 years का जो पीरियड था इतना चैलेंजिंग, अगर मैं स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं होती, स्टेबल नहीं होती, तो कभी भी हम उसको क्रॉस नहीं कर पाते, क्योंकि उस समय पर उसको होम स्कूल करना, ट्रीटमेंट देना, उसके दर्द से परे रहना। एंड शी सेड दिस स्टेटमेंट विच वी लर्न, शी सेड हम जो एक लाइन कहते हैं, साक्षी होकर के देखो तो वातावरण का सेक भी नहीं पड़ेगा। मतलब इफ यू आर डिटैच्ड, डिटैच्ड का मतलब बच्चे से डिटैच नहीं, बच्चे के दर्द से बहुत पेनफुल है ना, आपका योर ओन चाइल्ड इज इन सो मच पेन। सो डिटैच आप किससे हो रहे हैं, नेगेटिविटी से, दर्द से, सिचुएशन से नहीं, व्यक्ति से नहीं। हम डिटैचमेंट किससे समझते हैं, व्यक्ति या परिस्थिति से।
3: बहुत खूबसूरत।
4: यू आर इन द मिडल ऑफ दैट सिचुएशन,
3: वेरी नाइस,
4: आप उस समय पर हैं। एंड दैट इज वाई स्पिरिचुअलिटी जो है, हम कहते हैं कि अगर आप साक्षी होकर के देखेंगे तो वातावरण का सेक नहीं पड़ेगा, माना जो एनवायरमेंट है
3: उसका
4: इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा। सो स्पिरिचुअलिटी आई फील इज नॉट मेकिंग यू वीक, इट इज रादर गिविंग यू दैट स्ट्रेंथ टू डील विद व्हाटएवर चैलेंजेस यू गोइंग थ्रू।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। It's hot.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Welcome to Mirchi Mornings. यहाँ पर कॉफी काफी ज्यादा स्ट्रांग है और ओपिनियंस थोड़े से और ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन देसी जुगाड़ ना स्ट्रांगेस्ट है. अब देखो, तुम चाहे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, कहीं से भी हो, अगर तुम्हें हिंदुस्तानी आती है, तो तुम्हें मेरी बातें भी समझ में आती होंगी. एंड दिस इज योर मॉर्निंग अड्डा. आज का एजेंडा पता क्या है? हम थोड़ा सा बॉलीवुड सुनने वाले हैं, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया जीने वाले हैं और थोड़ा सा ज्ञान जो है एक दूसरे को देने वाले हैं, और साथ साथ में होने वाली है अराउंड द वर्ल्ड की अपडेट्स एंड रैंडम बातें जो कि तुम्हारे ऑफिस पहुंचने तक बोलने के लिए परफेक्ट कॉन्वर्सेशन स्टार्टर है. और हाँ, मुझे अपनी मॉर्निंग्स में इंक्लूड तुम कर सकते हो सोशल मीडिया पर भी. इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. फॉलो करो मुझे, बातें करो मुझसे, एंड व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज भी कर सकते हो 9033 मिर्ची पर, यानी कि 9033647244. सॉन्ग रिक्वेस्ट, शाउट आउट, कंप्लेन्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स सब भेज सकते हो तुम. मैं इमोशनली काफी स्ट्रांग हूँ. और अब चलाते हैं मिर्ची. There are bangers only for you. Stay tuned and stay hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
2: शशि वो मैनहट्टन है।
1: मैनहट्टन
3: मैन आजमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी
2: टैन मतलब वो धूप की छाप।

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची it's hot।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बात देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो। ई का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखाओ और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमको बताओ इंस्टाग्राम पर @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है।
0: साथ जीतूराज Only on Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट, नाम है प्रिसिला, शो का नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स। और अभी पता करते हैं मदर नेचर का आज क्या मूड है। राइट नाउ वी आर सिटिंग एट 57 डिग्रीज फारेनहाइट, फीलिंग लाइक अबाउट 58 डिग्रीज फारेनहाइट एंड इट्स मोस्टली सनी। एक्चुअली स्क्रैच दैट, सनशाइन इज टेकिंग ओवर द एंटायर डे। आज का टेम्परेचर रेंज जो है वो 56 डिग्रीज फारेनहाइट से 81 डिग्रीज फारेनहाइट के बीच में रहने वाला है, लेकिन आफ्टरनून आते आते इट कुड फील एज वार्म एज 84 डिग्रीज फारेनहाइट। और कल के कंपैरिजन में आज का हाई जो है वो भी हायर है। यस्टरडे टॉप्ड आउट एट 75 डिग्रीज फारेनहाइट, व्हाइल टुडे वी आर हेडिंग ऑल द वे टू 81 डिग्रीज फारेनहाइट। अब तुम सोचोगे रेन का क्या चांस है, तो जीरो चांस है। लास्ट 24 आवर्स में 0 मिलीमीटर्स की बरसात हुई और नेक्स्ट 24 आवर्स इज ऑल्सो 0 मिलीमीटर्स की बरसात। सो अम्ब्रेला को आज भूल ही जाओ, उसे छुट्टी दे दो लंबी। एंड रिमेम्बर, फील्स लाइक टेम्परेचर जो है वो एक्चुअल टेम्परेचर से थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। ह्यूमिडिटी, सनशाइन एंड विंड जो है सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि हर बॉडी को क्या वाइब मिलने वाला है। सो बेसिकली आज का जो फोरकास्ट है वो है सनी स्काइज, वार्मर टेम्परेचर्स, जीरो रेन एंड मैक्सिमम एक्सक्यूज टू गेट आउट ऑफ द बेड। एंड अभी तक अगर तुम नहीं निकले हो तो बाहर का मौसम देखो यार, कितना सुहावना हो रहा है। गेट अप, हैव प्लेंटी ऑफ वाटर थ्रू आउट द डे, वेयर योर सन प्रोटेक्शन एसपीएफ 50++++ वाला, लेयर के लेयर बनाओ और बाहर निकलो, कुछ एरेंड्स रन करके आओ, बाहर जाओ, दोस्तों से मिलो, पिकनिक पे जाओ, अपनी फैमिली के साथ प्लान बनाओ, डेट पे जाओ, कॉफी पे जाओ। अरे क्या क्या नहीं कर सकते हो बाहर जाकर। आज साथ साथ में ये भी कर सकती हूँ कि मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रिस्ट इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033647244। अभी चला दी तुम्हारे लिए मिर्चीदार बैंगर्स, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मेरा नाम है प्रिसिला और आप सुनने वाले हो तुम मिर्ची आवर का 3 ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। सबसे पहले इंडियन नेवी का एक वॉरशिप और पाकिस्तान नेवी के पीएनएस हुनैन की इंटरनेशनल वाटर्स में कोलिजन हो गई। इंडियन ऑफिशियल्स के मुताबिक पाकिस्तानी वेसल हाई स्पीड पर अप्रोच कर रहा था और इंडियन शिप से कांटेक्ट हो गया। इंडियन वेसल को मेजर डैमेज नहीं हुआ, व्हाइल रिपोर्ट से पीएनएस हुनैन वाज डैमेज्ड मेजरली। इंडिया हैज ऑल्सो लॉन्च्ड अ स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट। नंबर टू पर एमसीएक्स गोल्ड फ्यूचर्स वेंसडे मॉर्निंग अराउंड 1.516 लाख रुपीज पर ग्राम, roughly $1,581, while silver was around 2,351 lakh rupees per kilo, which is about $2,454. Using the reported rupee dollar rate, prices were moving as investors watched the US Federal Reserve decision. And lastly, cricket se India beat Afghanistan by 7 wickets in Delhi, chased 160 in just 14.5 overs and sealed the T20I series 2-0 with one game still to play. Sanju Samson smashed 57 off 22 balls while Nitish Kumar Reddy picked up 3 for 24. And that's it for your Mirchi Hour ka 3. Mera naam hai Priscilla. Mujhse connect karne ke liye Insta aur expert hundo Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp ka number 9033 Mirchi, that's 9033 647244. Stay tuned and stay hot.

0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Gambana. Burga, burga. La virtua la burga. Mirci, burga.
1: हेलो,
2: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
1: हाँ जी
2: यार, कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
1: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
2: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
1: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
2: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बिखा दिए यार, सारे दिमाग।
1: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
2: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
1: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर बेहतरीन, आप देखिए एक एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
2: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
1: अरे शर्म की क्या बात है सर,
2: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
1: किसी का
2: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
1: लेंस कौन सा लगाया नहीं?
2: क्या कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
1: गायब
2: नहीं दी थी मैं कल को। अरे लेंस ऐसे
1: पूरे
2: कपड़े कौन से? मैंने शेरवानी पहना की थी, शेरवानी गायब है अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी।
1: अरे
2: मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
1: नहीं सर, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
2: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे
1: हैं। सर क्या बात, चुनके बनाया है?
2: कोई फोटो चुनके नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका, चलो छोड़ो मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
1: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
2: गड़बड़
1: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
2: यार। इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
1: दिखाइए
2: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
1: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए।
2: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है।
1: कहाँ होता है बताइए?
3: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: PG Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, my name is Priscilla and this is Mirchi Mornings.
2: Mirchi Watch It.
1: And Maharaja, the movie has just pulled off something pretty major. Nithilan Swaminathan ki Maharaja, starring Vijay Sethupathi and Anurag Kashyap, is reportedly becoming the first Tamil film to get a Hollywood remake by a major studio. And get this, earlier reports suggested that Interstellar star Matthew McConaughey could headline the remake. Now, that is what I call a crossover. Tamil cinema meets Hollywood. Full-on international rishta jud raha hai. Producer Sudhan Sundaram ka kehna hai फिल्म का मैसिव 91 करोड़ का सक्सेस इन चाइना हेल्प अट्रैक्ट एन एजेंसी दैट अप्रोच द मेकर्स फॉर द रीमेक राइट्स. सो बेसिकली महाराजा वेंट फ्रॉम चेन्नई टू चाइना एंड नाउ हॉलीवुड इज सेइंग ओके बॉस आवर टर्न एंड फॉर अस देसीज इन द यूएस दिस इज एक्स्ट्रा फन बिकॉज द नेक्स्ट टाइम समवन सेज ओ इट वॉज जस्ट अ रीजनल फिल्म यू कैन सिंपली से रीजनल ब्रो हॉलीवुड इज कॉलिंग. मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ मैं सुन रही थी मिर्ची मॉर्निंग्स. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट लेट मी नो. इंस्टा और एक्स पे मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिज दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोर,

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बात देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौज है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर तो मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है, कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक और त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो है ई का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जब धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमार कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: साथ जीतूराज। Only on Mirchi, it's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, this is Priscilla with you. Sunne wale ho tum Mirchi par gold rate update.
2: Rajjewels.com wishes everyone happy and healthy morning. Gold rating at $4,390. $4,390 पर ट्रायंस के साथ आज सुबह गोल्ड की प्राइस ट्रेड कर रहे हैं. गोल्ड में इन्वेस्ट करना है लेकिन समझ नहीं आता किस प्राइस पे इन्वेस्ट किया जाए. आप 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं, समझ नहीं आ रहा कि गोल्ड के ऊपर कितनी लेबर चार्ज ऐड हो रही है. आइए राज ज्वेल्स की डॉट टीम से कनेक्ट करें. 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी का प्राइस, उसके ऊपर कितनी लेबर और क्या एडिशनल चार्जेस के साथ आप ज्वेलरी घर ले जा सकते हैं 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट के साथ 9 मंथ की फाइनेंसिंग में. राज ज्वेल्स की स्पेशल फाइनेंसिंग ऑप्शन जिसमें अप्रूव होने पे आज ज्वेलरी घर जाती है और 9 किस्तों में राज ज्वेल्स की टीम को पैसे मिलते हैं. आइए गोल्ड में इन्वेस्ट करें RajJewels.com के साथ. थैंक यू. हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल.
1: दैट्स इट फॉर योर गोल्ड रेट का लेटेस्ट अपडेट एक्सक्लूसिवली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स विद मी प्रिसिला. कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पे, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Energy. Escabana, buscabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. Na vida, la burga.
1: Energy, burga. हेलो
2: हेलो मुकेश जी.
1: कौन
2: मुकेश जी? मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ, राणा मोटर से. आपने जो 1000 दी थी ना, उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था, वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली. थोड़ा
1: नहीं हो पाया भाई?
2: हाँ वो नहीं हो पाया सर.
1: हाँ नहीं हो पाया
2: सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी. अच्छा सर, आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की. सर वो भी हो नहीं पाई है, वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी.
1: नहीं क्या हो नहीं पाया तुम्हारे यार, रोज के तुम्हें जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया है. क्या मजाक ही क्या है ये?
2: नहीं मुकेश जी मैं समझ रहा हूँ वो एक
1: क्या समझ रहे हो भाई.
2: नहीं नहीं आप सही कह रहे हैं. अच्छा मुकेश जी आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है, ब्रेक काम नहीं कर रहे. सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा.
1: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
2: सर? वो
1: ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया. मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया.
2: नहीं सर
1: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे.
2: नहीं सर कुछ हो नहीं पाया.
1: क्यों नहीं हो पाया
2: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
1: हैं
2: सर रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी?
1: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
2: अरे सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ. मतलब हम
1: क्या करा दूँ
2: सर? मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
1: कैसी FIR? दिमाग खराब हो गया तेरा? पागल तो नहीं है तू?
2: अरे सर जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे आप? गुस्सा तो मत करिए कम से कम.
1: क्या गुस्सा ना करूँ, नई गाड़ी थी हमारी.
2: नहीं सर आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारा भी तो उसमें कुछ गया है. हमने भी तो ग्रीस लगाया.
1: उसमें
2: ग्रीस लगाया, उसमें हमने पेट्रोल डाला है.
1: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगाया. आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में.
2: अच्छा
1: मुझे चाहिए अपनी वापस.
2: सर आप इतना गुस्सा ना करें,
1: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की.
2: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें. अच्छा सर ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया है मुर्गा.
3: मुकेश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ, मुर्गा बना दिया तुम्हारा.
1: तो जान निकाल दी हमारी.
3: मुकेश आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप में, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे. मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: Hey there, my friend. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में। Welcome to Rashi Zone Part 1.
2: मिर्ची राशि जोन।
1: एरीज यानी मेष राशि, आज अपनी लिमिटेशंस को चैलेंज करो, लेकिन एंजाइटी को रियलिटी का नाम मत दो। डिसीजंस फैक्ट से लेना चाहिए, व्हाट इफ से नहीं। लकी कलर इज कोरल, लकी नंबर इज 14। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, शाइनी डिस्ट्रैक्शंस बहुत मिलेंगे, बट हर चमकती चीज अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। लॉन्ग टर्म गोल पर फोकस रखो। लकी कलर इज ऑलिव ग्रीन, लकी नंबर इज 6। जेमिनी यानी मिथुन राशि, हर आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी नहीं होता है। आज मेंटल पीस को पेटी ईगो बैटल से ऊपर रखो। म्यूट बटन भी एक सुपर पावर है। लकी कलर इज स्काई ब्लू, लकी नंबर इज 23। कैंसर यानी खर्क राशि, क्रॉस रोड्स मोमेंट, डिसीजंस लो अकॉर्डिंग टू योर वैल्यू, नॉट प्रेशर, गिल्ट या दूसरों की एक्सपेक्टेशंस। दिल और प्रिंसिपल्स दोनों की एक मीटिंग बुलाओ और उसमें तुम खुद भी बैठ जाओ। लकी कलर इज पर्ल व्हाइट, लकी नंबर इज 9। लियो यानी कि सिंह राशि, टीम वर्क इज योर सीक्रेट सॉस टुडे। घर हो या काम हो, थोड़ा सा गिव एंड टेक बनाए रखो हर जगह। सोलो हीरो बनने की जरूरत कतई नहीं है। लकी कलर इज मैरी गोल्ड, लकी नंबर इज 18। वर्गो यानी खन्या राशि, आज रूटीन और सेल्फ केयर को कॉस्मिक सपोर्ट मिल रहा है, तो हाइड्रेशन, रेस्ट, रूटीन, हाँ सारा बोरिंग लगता है ना तुम्हें, वो सारा बोरिंग काम आज करना, बिकॉज इट विल वर्क फॉर यू। लकी कलर इज लैवेंडर, लकी नंबर इज 4। अब ये तो हो गया राशि जोन पार्ट 1, बाकी बची 6 राशियों को लेकर आती हूँ थोड़ी सी देर में राशि जोन पार्ट 2। तब तक तुम सुनो ये बैक टू बैक मिर्चीदार बैंगर्स फॉर नेक्स्ट 20 मिनट्स। मैं आऊंगी उसके बाद। मीन वाइल यू गो एंड फॉलो मी इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: वेलकम बैक टू राशि ज़ोन पार्ट टू. मैं हूँ प्रिसिला. तुम्हारे साथ में मिर्ची मॉर्निंग्स पर अब बात करेंगे लीब्रा से पाइसीस तक.
2: मिर्ची राशि ज़ोन.
1: लीब्रा यानी तुला राशि. इमोशनल बैलेंस इज योर वाइब टुडे. क्लोज रिलेशनशिप्स में सेल्फ अवेयरनेस रखो और क्लैरिटी के साथ बात करो. माइंड रीडिंग सर्विस अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल ही नहीं है. लकी कलर इज रोज पिंक. लकी नंबर इज 11. स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि. शार्प माइंड एम्बिशियस मूड. एनर्जी को ना 10 डिफरेंट डायरेक्शन में मत भेजो. स्ट्रेटेजिक मूव करो, स्कैटर्ड मूव नहीं. लकी कलर इज बर्गंडी. लकी नंबर फॉर टुडे इज 27. सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि. एडवेंचर चाहिए, स्पेस चाहिए, लेकिन पार्टनरशिप में हेल्दी बाउंड्रीज नहीं चाहिए. फ्रीडम और कमिटमेंट एक दूसरे के एनिमीज नहीं है. लकी कलर इज टर्कोइज. लकी नंबर इज 16. कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि. वर्क मोड ऑन कर लो. बिजनेस लीक ट्रैक करो. डिटेल्स पे फोकस रखो बिकॉज रिकॉग्निशन कुड फॉलो माय ब्रदर. बेसिकली रिसीट संभाल कर रखो आज. लकी कलर इज चारकोल ग्रे. लकी नंबर इज 8. अक्वेरियस यानी कुंभ राशि. आज कुछ इंपॉर्टेंट वर्क क्वाइटली बिहाइंड द सीन्स मूव कर सकते हैं. पर्सनल डेवलपमेंट भी प्रोग्रेस है इवन इफ इंस्टाग्राम पर पोस्ट नहीं कर. लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ब्लू. लकी नंबर इज 21. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पाइसीज, मेरे दोस्त मीन. तुम्हारी विशेस को थोड़ा सा अनपैक करो, इंट्यूशन को स्पेस दो और ग्रोथ के लिए, नए इनसाइट्स के लिए अपनी आंखें खुली रखो. दिल कुछ कह रहा है, एटलीस्ट एक बार लिसन तो कर लो. लकी कलर इज सी ग्रीन. लकी नंबर इज 30. एंड दैट वाज योर राशि जोन फॉर टुडे. मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में. यू कैन कैच मी ऑन मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. ये इंस्टाग्राम और एक्स पर मेरा हैंडल नेम है. और साथ में मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो तुम 9033 मिर्ची पर. दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौज है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तो हका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हाँ, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जब धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: साथ जीतूराज। Only on Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: हेलो, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स का रैप अप टाइम, क्योंकि भाई जाना भी होता है मुझे। अब जाने का टाइम है तो जाते जाते तुम्हें कुछ बताना भी बनता है। मेगन मार्कल को तो जानते होगे, अरे पर्सनल फोन नंबर लीक हो गया है उनका। इट वॉज रिपोर्टेडली एक्सपोज आफ्टर अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम अ स्कूल पेरेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप सर्कुलेटेड। द डचेस हैड जॉइंड द ग्रुप एज हर चिल्ड्रन आर्ची एंड लिलीबेट स्टार्टेड स्कूल इन द यूके। द चिल्ड्रन हैव सिंस मूव्ड टू अनदर स्कूल फॉलोइंग सिक्योरिटी कंसर्न। The family's representative said the decision followed discussions with their security team, particularly around the school commute and traffic. And honestly, यार एक lesson तो हम सबके लिए इसमें है कि WhatsApp group में good morning भेजना अलग बात होती है, किसी का private number circulate कर देना by mistake या deliberately, it's not okay. Privacy is privacy even when the person is a royalty adjacent या फिर कोई celebrity हो या फिर कोई भी हो, यार दोस्त भी हो सकता है। Keep your coffee hot and your gossip harmless and your WhatsApp screenshots private. Tata bye bye from me, Priscilla. Instagram और X पर मेरा handle है mirchipris, that is mirchipris, and WhatsApp का number है 9033 mirchi, that's 9033647244. यहाँ पे तुम मुझे message भेज सकते हो, कोई screenshot leak नहीं होने वाला है। अभी के लिए डाला बाय बाय है मिर्चीदार बैंगर्स के साथ, छोड़कर जा रही हूँ मैं। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

आज मेरा पता नहीं क्यों मन कर रहा है कि मैं आपको थोड़ा सा डरा दूं। पुरानी जीन्स पे हेलो वेलकम, दिस इज मी श्रेया। डराने से मेरा मतलब है कि हॉरर फिल्म की बात करूं। वेल, ये वो टाइम था जब हॉरर फिल्में बहुत ज़्यादा बनती नहीं थी, और जब बनती भी थी तो वो हॉरर का मिस्ट्री ज़्यादा हो जाती थी। दिस वाज वन ऑफ दोज फिल्म्स जो इनिशियल ईयर्स में आई और जिसने राम से ब्रदर्स का करियर एस्टेब्लिश किया। राम से ब्रदर्स हु वर लेटर नोन टू मेक हॉरर फिल्म्स ओनली। वेल, उन्होंने बनाई 1984 की ये फिल्म जिसका नाम था पुराना मंदिर। इसमें बहुत सारे लोग थे, इसमें मुनीश बहल थे, पुनीत सर थे, आरती गुप्ता थी, एक्ट्रेस थी। वेल, इस फिल्म में ना कुछ अजीबोगरीब घटनाएं भी हुई, सब बताऊंगे ना जल्दी किस बात की। अभी अभी तो आई हूँ, अभी आगे आगे सुनो होता है क्या। उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स। तो मिर्ची पे जल्दी से गाने सुन करके वापस आओ, आज का सिलसिला शुरू करते हैं।

0: हेलो,
1: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
0: हाँ जी।
1: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
0: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
1: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
0: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
1: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बका दिए यार, सारे दिमाग।
0: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो।
1: बहुत, अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
0: मैंने देखी खुद अपने हाथ से एल्बम। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
1: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
0: अरे शर्म की क्या बात है सर,
1: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
0: किसी का
1: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
0: लेंस लगाया नहीं।
1: क्या कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
0: गायब नहीं
1: दी थी
0: मैं कल को।
1: अरे लेंस ऐसे पूरे कपड़े कौन से, मैंने शेरवानी पहना की थी, शेरवानी गायब है अंदर से, सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
0: सर शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
1: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
0: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
1: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
0: सर क्या बात, सुन के बनाया है?
1: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका, चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
0: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
1: गड़बड़
0: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
1: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
0: दिखाइए
1: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
0: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए।
1: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है।
0: कहाँ होता है बताइए?
2: रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटरा।
4: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स, श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

श्याम और तुलसीराम से की ये पहली हॉरर फिल्म थी और उसके बाद इस फिल्म के हिट होने के बाद रादर उनकी हॉरर फिल्मों की लाइनें लग गई। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ 1984 की फिल्म आई पुराना मंदिर, जिसने बॉक्स ऑफिस पे लोगों को इतना डराया कि लोग ना बार बार डरने पहुंच रहे थे। मेरा मतलब है कि द मूवी वॉज सुपर डुपर हिट। एंड जब उन्होंने ये फिल्म शूट की ना, तो इसमें आप देखोगे एक हॉन्टेड हवेली है। ये हॉन्टेड हवेली जो दिखाई जाती है वो एक नवाब पैलेस है जो कि मुरूद जंजीरा, विच इज इन अ स्मॉल विलेज इन महाराष्ट्र, वहाँ पे सिचुएटेड है। एंड यहाँ पे रामसे ब्रदर्स ने अपनी ये पहली हॉरर फिल्म शूट की थी। उसके बाद जो इतनी सारी उन्होंने हॉरर फिल्में बनाई ना, सब में उन्होंने इसी पैलेस को लिया था। वेल, उनको लगता था ये उनका लकी चार्म भी है और उनको लगता था कि हॉरर दिखाने के लिए ये पैलेस एकदम एप्ट है। पुरानी जीन्स पे ना इसी फिल्म की ढेर सारी बातें, हॉरर बातें पता करके आई हूँ। वापस आओ श्रेया के साथ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: only on Radio Mercy New York. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

एक बहुत ही अजीबोगरीब हादसा हुआ जब ये फिल्म को शूट किया जा रहा था। वेल, इस हादसे के बाद सेट पे काफी लोग डर गए थे। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और जैसा कि मैंने कहा, आज मुझे आपको थोड़ा डराने का मन कर रहा है। मेरा मतलब है आज हॉरर फिल्म की बात करने का मन कर रहा है। सो पुराना मंदिर की बात हो रही है जिसमें थे मुनीष बहल, आरती गुप्ता, पुनीति सर, और इसमें थे भाई एक और एक्टर जिनका नाम था अजय अग्रवाल। अब मैं बताती हूँ हुआ क्या। तो एक सीन होता है जिसमें अजय अग्रवाल एक कॉफिन में बंद है, और फिर जब वो कॉफिन वापस निकाला जाता है, उसको खोला जाता है, तो वो ऐसे उठते हैं कि उनको ना सबको डराना है सडनली। हाँ, कॉफिन खुलते ही बस उठ जाना और डराना है। अब हुआ ये कि ये कॉफिन एक्चुअली में बहुत देर तक खुला ही नहीं, एंड इट जस्ट हैपेंड। किसी को नहीं पता आज तक कि ऐसा क्यों हुआ। अजय अग्रवाल, जिनको कॉफिन से निकलना था और डराना था, वो ये सीन कर ही नहीं पा रहे थे। बार बार टेक 1 2 3 राम से ब्रदर्स कर रहे थे, बट ही डिड नॉट गेट आउट ऑफ द कॉफिन। जब देखा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो पता चला कॉफिन लॉक हो गया है, और उसके बाद 1 घंटा लगा क्रू को कॉफिन तोड़ के उनको बाहर निकालने में। अब इस सीन के बाद जो हड़कंप मचा ऑन द सेट, क्या ये सीन फिर से कंप्लीट हुआ? ये कहानी और भी इंटरेस्टिंग है, बताऊंगी। वापस आओ कुछ गानों के उस पार। दिस इज श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर साथ जीतू राज Only on Mirchi. It's hot.
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बात देखल बे ना इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक कॉल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं। ई का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखाओ और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: जीतूराज। Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

कास्ट एंड क्रू इतना डर गई थी इस सीन के बाद कि आधे लोग एक्चुअली लेफ्ट पुरानी जींस पे आप और श्रेया के साथ. एंड आज मैं बात कर रही हूँ हॉरर फिल्म 1984 की पुराना मंदिर, जो रामसे ब्रदर्स की पहली हॉरर फिल्म थी. इसमें थे मोनीश बहल, आरती गुप्ता, पुनीति सर. और ना ये फिल्म में एक ऐसा सीन हुआ, एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद हर कोई एक्चुअली में डर गया था. आधा कास्ट लेफ्ट एंड वेंट बैक. क्या हुआ था बताती हूँ. ये कहानी अभी थोड़ी देर पहले मैं आधी छोड़ के गई थी. सो अजय अग्रवाल एक एक्टर, उनको क्या करना था कि उन्हें एक कॉफिन में बंद करना था. बंद करने के बाद सीन ऐसा होना था कि कॉफिन बाहर निकलेगा और वो एकदम से निकलेंगे और लोगों को डरा देंगे. अब भाई रामसे ब्रदर्स ने 2-3 टेक्स दिए, लेकिन अजय अग्रवाल कॉफिन से बाहर ही नहीं निकल रहे थे. सडनली सबने रियलाइज किया कि क्या हो गया, व्हाट्स द प्रॉब्लम. तो देखा गया कि कॉफिन अपने आप बंद हो गया है. और फिर करीब 1 घंटा लगा वो कॉफिन तोड़ करके अजय अग्रवाल को बाहर निकालने में. ये चीज देख करके ना कास्ट एंड क्रू में एकदम, जिसे कहते हैं, डर का माहौल हो गया था. हाफ ऑफ देम एक्चुअली लेफ्ट एंड वेंट. एंड अजय अग्रवाल वापस कॉफिन में जा करके ये सीन शूट करने से बिल्कुल मना करने लगे. वो तो रामसे ब्रदर्स ने किसी तरह उनको समझाया कि इसमें बस कैमरा लगा है, ये सिर्फ एक सीन है एंड ऑल ऑफ दैट. वो गलती से बंद हो गया होगा, वो कुछ प्रेशर से बंद हो गया होगा, ये सब समझाया गया. तो किसी तरह ये सीन तो शूट हुआ, लेकिन आधे ही क्रू के साथ शूट हुआ था. पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया. इसी फिल्म की बातें और भी जारी रहेंगी. कहीं भी मत जाना, गाने सुन करके वापस आओ.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

थिएटर में ये मूवी एकदम अमिताभ बच्चन जी की मूवी के बगल में लगी थी और तब किसी ने नहीं सोचा था कि बच्चन साहब की मूवी में कम लोग जाएंगे और इस हॉरर फिल्म में पहली बार इतने लोग आएंगे। पुरानी जीन्स पे हाय, मैं हूँ श्रेया और आज एक हॉरर फिल्म की बात हो रही है, 1984 की पुराना मंदिर, विच वॉज अ सुपर डुपर हिट फिल्म। वेल, ये फिल्म जब रिलीज हुई ना तो बच्चन साहब की लावारिस भी रिलीज हुई और दिल्ली का एक थिएटर था जिसमें दो हॉल्स थे एट दैट टाइम, तो ये उस थिएटर में साइमल्टेनियसली रिलीज हुई थी। मतलब एक हॉल में लगी हुई थी बच्चन साहब की लावारिस और दूसरे हॉल में लगी हुई थी पुराना मंदिर। एंड कैन यू बिलीव कि उस टाइम पे लोग लावारिस से ज्यादा पुराना मंदिर में देखे गए थे? यस, दैट एक्चुअली हैपेंड। वेल, रामसे ब्रदर्स की ये पहली हॉरर फिल्म थी। आज इसी की बातें चल रही हैं, श्रेया के साथ कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना
3: बाना
2: मुर्गा मुर्गा नवीद वाला मुर्गा
3: मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो
5: मुकेश जी।
4: कौन
5: मुकेश जी? मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ राणा मोटर से। आपने जो 1000 दी थी ना उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली। थोड़ा
4: नहीं हो पाया भाई?
5: हाँ वो नहीं हो पाया सर।
4: हाँ नहीं हो पाया
5: सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा सर, आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की।
4: हाँ
5: सर, वो भी हो नहीं पाई है, वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी।
4: नहीं क्या नहीं पाया तुम्हारे यार, रोज के तुम्हारे जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया है, क्या मजाक ही क्या है ये?
5: नहीं मुकेश जी मैं समझ रहा हूँ वो एक
4: क्या समझ रहे हो भाई।
5: नहीं नहीं आप सही कह रहे हैं। अच्छा मुकेश जी आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है, ब्रेक काम नहीं कर रहे सर, वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा।
4: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
5: सर, वो
4: ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया, मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये हो पाया वो नहीं हो पाया।
5: नहीं सर
4: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे।
5: नहीं सर कुछ हो नहीं पाया।
4: क्यों नहीं हो पाया
5: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी
4: है?
5: सर रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी।
4: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
5: अरे सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मतलब हम
4: क्या करा दूँ
5: सर, मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
4: कैसी FIR? दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल तो नहीं है तू?
5: अरे सर जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे, आप गुस्सा तो मत करिए कम से कम।
4: क्या गुस्सा ना करूँ, नई गाड़ी थी हमारी।
5: नहीं सर आप आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारा भी तो उसमें कुछ गया है, हमने भी तो ग्रीस व्रीस लगाया,
4: उसमें
5: ग्रीस ग्रीस लगाया, उसमें हमने पेट्रोल डाला है।
4: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगा। आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में।
5: अच्छा सर
4: मुझे चाहिए अपनी वापस।
5: सर आप इतना गुस्सा ना करें,
4: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की।
5: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें। अच्छा सर ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया है मुर्गा।
6: मुकेश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ, मुर्गा बना दिया तुम्हारा।
4: तो जान निकाल दी हमारी।
6: मुकेश आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप में, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे। मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए।
7: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ये ना एक पाथ ब्रेकिंग फिल्म थी इन द हॉरर जॉनर ऑफ इंडिया। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और जिस फिल्म की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है पुराना मंदिर। इट वॉज अ ह्यूज हिट, मतलब इतनी बड़ी हिट थी कि उसी टाइम पे बच्चन साहब की लावारिस रिलीज हुई थी, और दिल्ली का एक हॉल था जहाँ पे ना दो हॉल्स एक साथ थे, एक थिएटर था जिसमें दो हॉल्स एक साथ थे, एक में लावारिस लगी हुई थी और एक में पुराना मंदिर। एंड कैन यू बिलीव कि लावारिस से कहीं ज्यादा टिकट्स भाई पुराना मंदिर के सेल हुए थे। वेल, इस फिल्म ने ना बहुत एनकरेज किया रामसे ब्रदर्स को टू मेक मोर हॉरर फिल्म्स। इसके बाद से तो उन्होंने हॉरर फिल्मों की एकदम लड़ी झड़ी लगा दी, डाक बंगला बनाया, वीराना बनाया और तहखाना बनाया, एंड सो मैनी ऑफ देम। वेल, इस फिल्म में ना एक और बड़ी खास बात थी, क्या थी वो अभी बताऊंगी आपको। ये बीच में आपके और मेरे ना गाने आते हैं जिसको सुनने के लिए आप और मैं यहाँ रोज आते हैं, तो इनको सुन करके वापस आओ। आई विल लेट यू नो, दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: अच्छा उस टाइम पे हीरो फेमस होता था, साथ साथ विलेन भी उतना ही पॉपुलर हो जाता था। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, जैसे कि गब्बर, मतलब ये गब्बर नाम इतना पॉपुलर हुआ कि भाई सिप्पी साहब को ना एक और छोटी सी फिल्म बनानी पड़ी, नेम्ड ओनली गब्बर। एंड ऐसा ही कुछ हुआ रामसे ब्रदर्स के साथ, जब उन्होंने आज जिस फिल्म की मैं बात कर रही हूँ, उनकी पहली हॉरर फिल्म पुराना मंदिर 1984 में बनाई। तो इस फिल्म में जो डीमन था, जो भूत था, उसका नाम था सामरी। एंड ये सामरी घर घर में फेमस हो गया था, लोग डराने के लिए एक दूसरे को सामरी का नाम लेते थे। एंड इमेजिन द नेम गॉट सो पॉपुलर कि राइट आफ्टर दिस फिल्म व्हेन इट गॉट हिट 1984 में, 1985 में रामसे ब्रदर्स ने एक और फिल्म बनाई, उसका नाम रखा सामरी 3D, जो भी काफी हिट हुई थी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ आज इसी फिल्म की बातें हो रही है, सो कम राइट बैक।
1: अच्छा ये बात है तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ, जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच सच देना। डन
2: डन
1: डन। अच्छा तो ये बताओ बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गर्मियों की निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?

0: आज सोमवार है,
1: अरे बाबा है,
0: तुमको मुझसे प्यार है,
1: है?
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट
1: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौज है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं। ये का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां भूलना मत, हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @ मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
1: जीतूराज Only on Mirchi, it's hot.
3: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ये फिल्म तो हिट हो गई लेकिन फिल्म के हीरो इससे काफी अपसेट हुए। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट रामसे ब्रदर्स की फर्स्ट सुपर हिट हॉरर फिल्म। वेल पुराना मंदिर 1984 की ये फिल्म थी जिसमें मुनीश बहल थे, और मुनीश बहल की जब ये फिल्म रिलीज हुई उन्होंने फिल्म मेकर्स के बारे में बहुत कुछ कहा, रामसे ब्रदर्स के लिए बहुत कुछ कहा। ही सेड कि मुझे लगा था कि ये फिल्म जो है हॉरर होने के बावजूद बी ग्रेट फिल्म नहीं बनेगी, लेकिन फिल्म के रिलीज होने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि इट वॉज ऑल अबाउट हॉरर, इट वॉज ऑल अबाउट यू नो द डीमन, इट वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी जिसमें हीरो का कोई खास लेना देना हुआ नहीं। उनकी मम्मी नूतन ने भी यही बात कही और फिल्म मैगजीन्स ने इंटरव्यू बहुत छापा, क्योंकि इस फिल्म के हिट होने के बाद मुनीश बहल को जनरली सब बी ग्रेड फिल्म्स आने लगी थी और उस टाइम पे हॉरर फिल्मों को बी ग्रेड की श्रेणी में रखा जाता था। वेल, मुझे थोड़ा अजीब लगा जब मैं ये पढ़ रही थी, क्योंकि जब आप फिल्म करने लगते हो तो ऑफकोर्स आपको पता चल जाता है कि ये जो फिल्म है ये कौन से जॉनर की है, ये जो फिल्म है इसमें मेरा कैरेक्टर कितना स्ट्रांग दिखेगा, कितना वीक दिखेगा। एंड अगर फिल्म हिट होने के बावजूद आप ये बोलें कि मुझे पता नहीं चला कि ये फिल्म कैसे पोर्ट्रे होगी, ऑल ऑफ दैट, तो फिर यार मतलब नहीं, ये बेईमानी है, क्या कहते हो आप? वेल, डू लेट मी नो फेसबुक और इंस्टा पे, माई हैंडल इज आरजे श्रेया विद लव, दैट्स आरजे SHREYA विद लव, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

श्याम रामसे और तुलसी रामसे के जितनी हॉरर फिल्म्स थी उनमें ना बैकग्राउंड म्यूजिक सेम होता था। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, एंड आई वाज थिंकिंग कि क्या स्ट्रैटेजी यूज की थी। आई मीन हम लोग कहते हैं ना कि कोई चीज बार बार करो तो उसका रिकॉल बढ़ता है, टॉप ऑफ द माइंड प्रायोरिटी सेट होती है, ऑल ऑफ दैट। एंड इमेजिन इन्होंने तो सिर्फ म्यूजिक से उस चीज को एस्टैब्लिश कर दिया था। मतलब रामसे ब्रदर्स की म्यूजिक जैसे ही लोग सुनते थे ना उनकी फिल्मों की, तो उन्हें लग जाता था ओ हो हॉरर फिल्म। एंड इट बिकेम सो पॉपुलर कि आपको याद है जी पे आया करता था द जी हॉरर शो, उसमें भी रामसे ब्रदर्स की ये हॉरर म्यूजिक जो थी ना उसको यूज किया जाता था बैकग्राउंड स्कोर की तरह। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ आज उनकी पहली हिट हॉरर फिल्म, वेल 1984 में आई पुराना मंदिर, इसकी बातें चल रही हैं। और भी बातें हैं बताऊंगी आपको, बीच में आपके में और मेरे गाने आ रहे हैं तो उनको सुन करके यहीं वापस आओ।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: हेलो,
3: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
2: हाँ जी।
3: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचा थे मेरे बेटे की शादी का, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
2: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
3: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
2: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
3: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बका दिए यार, सारे दिमाग।
2: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
3: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
2: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
3: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
2: अरे शर्म की क्या बात है सर,
3: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
2: किसी का
3: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
2: लगाया नहीं
3: क्या, कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
2: गायब नहीं
3: दीदी, मैं कल का
2: फोटो खींचे।
3: अरे लेंस ऐसे पूरे कपड़े कौन से, मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
2: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
3: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
2: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
3: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
2: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
3: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू, उसका चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
2: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
3: गड़बड़
2: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
3: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी,
2: दिखाइए
3: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
2: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए।
3: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है,
2: कहाँ होता है बताइए?
4: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट,
6: इट पटक।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अनिरुद्ध अग्रवाल जो कि सामरी के नाम से फेमस हो गए थे इंडिया के घर घर में, यानी उस कैरेक्टर नेम से जिसमें भूत दिखाया गया था। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट वेल रामसे ब्रदर्स की पहली हॉरर फिल्म 1984 में आई, इसका नाम था पुराना मंदिर। वेल इसमें सामरी के कैरेक्टर से अनिरुद्ध अग्रवाल वाज वेरी वेरी पॉपुलर, और कहते हैं कि मूवी पूरी कंप्लीट हो गई थी, सिर्फ जो डीमन के सीन्स थे यानी भूत के जो सीन्स थे ना उनको छोड़ा गया था क्योंकि एक एप्ट कैरेक्टर मिली नहीं रहा था रामसे ब्रदर्स को। फिर एक दिन उनके एक दोस्त ने अनिरुद्ध अग्रवाल को स्पॉट किया और उनको ना रामसे ब्रदर्स के ऑफिस का एड्रेस दिया। वो जैसे ही वहाँ पहुँचे कहते हैं कि श्याम रामसे तो अपनी कुर्सी से खड़े हो गए कि हाँ हाँ मुझे सामरी मिल गया, मुझे सामरी मिल गया। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: नहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

अगर फिल्म में सिर्फ टाइट सीन्स होते ऑफ हॉरर एंड भूत एंड ऑल ऑफ दैट, तो शायद फिल्म में कहीं कॉमेडी रह जाती, और ये बात ना रामसे ब्रदर्स ने अच्छे से समझ ली थी। इसीलिए फिल्म में लाइटर मोमेंट्स देने के लिए राजेंद्र नाथ, ललिता पवार और जगदीप जी को लाया गया था। उनमें ना उनकी कॉमेडी में एकदम शोले, 1975 में शोले आई थी, मतलब 10 साल हो चुके थे शोले को आए हुए, उसके कुछ कुछ एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। मतलब वही कॉमिक टाइमिंग, वही कॉमिक सीन्स, थोड़े बहुत वही डायलॉग्स, वही ट्रीटमेंट ऑफ कॉमेडी। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, और आज जिस फिल्म की बात हो रही थी वो रामसे ब्रदर्स की हॉरर फिल्म की, स्ट्रिंग ऑफ हॉरर फिल्म्स की पहली हिट हॉरर फिल्म थी। इट वॉज पुराना मंदिर 1984 में। ये फिल्म हिट होने के बाद रामसे ब्रदर्स ने इतनी सारी हिट फिल्में बनाई विच वर यू नो ऑफ द सेम हॉरर जॉनरा, जैसे कि तहखाना बनाई, डाक बंगला बनाई, वीराना बनाई। लेकिन हाँ, सबसे ज्यादा अगर कोई हिट हुई वो थी पुराना मंदिर। आज इसी फिल्म की बातें चल रही है श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक और त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो। हैं ये का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करें, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर, आए @ मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है।
1: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे अब श्रेया के साथ जाने का टाइम, यानी आपको तो पता ही क्या करना होगा, जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोलना होगा और मेरे साथ हाईवे तक चलना होगा। Well, आज का मेरा हाईवे हिट मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ मेरे जैसे उन सारे लोगों को जो जब स्कूल में थे और मम्मी पापा के प्रोटेक्शन में थे, टीचर्स के प्रोटेक्शन में थे, तब हमको लगता था हम कब बड़े होंगे, हम कब अपनी ज़िंदगी खुद जिएंगे, हम कब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद लेंगे, हम कब अपने फ्रीडम को यूज़ कर पाएंगे। आज जब सब कुछ है तो सच में ये गाना याद आता है। लता जी ने गाना गाया एंड ये गाना ना उन सभी लोगों के लिए मेरी तरह जो ऐसे लम्हे आजकल ढूंढते हैं ना। और कोई काम नहीं होता था, सिर्फ पढ़ो लिखो, थोड़ा बहुत टीवी देखो, खाओ पियो सो जाओ फुर्सत के रात दिन। On that note, this is Shreya signing off. अगर आपको मुझसे कुछ कहना है, one to one बात करनी है, तो Facebook और Insta पे my handle is RJ Shreya with love. That's RJ SHREY Shreya with love. On that note, good night.

0: एक ट्रेंड फॉलो करने की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू?
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: अब देखो इंस्टाग्राम पे हर दूसरे दिन एक नया ट्रेंड ही आ जाता है। जैसे फिलहाल चल रहा है कि भाई अपनी पिक्चर्स आप 80s रेट्रो फॉर्म में पोस्ट कीजिए, और ऐसा करने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, यानी AI का। तो जहाँ एक तरफ हम मजे मजे में इंस्टाग्राम पे अपनी फोटोज को 80s रेट्रो स्टाइल में चेंज करके पोस्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक अलग रियलिटी भी है। सो AI मॉडल्स को रन करने वाले जो डेटा सेंटर्स होते हैं, वहाँ थाउजेंड्स ऑफ पावरफुल GPUs होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, और इन सर्वर्स को कूल रखने के लिए भी बड़े अमाउंट में पानी का इस्तेमाल होता है। हाँ जी, वही पानी जो हमारी पृथ्वी से गायब होता जा रहा है। और ये इम्पैक्ट ना सिर्फ डेटा सेंटर्स तक नहीं, इनफैक्ट AI चिप्स बनाने के लिए मिनरल्स की माइनिंग और एनर्जी इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग भी इन्वॉल्व्ड है। अब आप सोचेंगे कि यार एक इमेज से ऑब्वियसली कोई बड़ा एनवायरमेंटल क्राइसिस तो नहीं हो जाएगा ना, बट फैक्ट तो ये भी है ना कि हर दूसरा इंसान यही सोच रहा है। इन शॉर्ट यहाँ कंसर्न है स्केल का। जब मिलियंस ऑफ यूजर्स एक ट्रेंड के चक्कर में बार बार इमेजेस जनरेट करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और हार्डवेयर की डिमांड कलेक्टिवली काफी बढ़ जाती है। तो मुद्दे की बात यह है बाबू मोशाय कि ट्रेंड का हिस्सा बनो सही है, बट हर दूसरे ट्रेंड को फॉलो करने से पहले थोड़ा माइंडफुल होना भी जरूरी है। बाकी तो जैसे बच्चे को गुब्बारा काफी, वैसे समझदार को इशारा काफी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Escabana,
1: buscabana, sacabana. Gambala. Murga, murga. La vieja la murga.
2: Mirchi, murga.
3: हेलो
4: हेलो मुकेश जी.
3: कौन?
4: मुकेश जी मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ, राणा मोटर से. आपने जो 1000 दी थी ना, उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था, वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली. थोड़ा
3: नहीं हो पाया भाई.
4: हाँ वो नहीं हो पाया सर.
3: हाँ नहीं हो पाया
4: सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी. अच्छा सर, आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की.
3: हाँ
4: सर, वो भी हो नहीं पाई है, वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी.
3: नहीं, क्या नहीं पाया तुम्हारे यार, रोज गए तुम्हें, जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, क्या मजाक ही क्या है ये.
4: नहीं मुकेश जी, मैं समझ रहा हूँ वो एक.
3: क्या समझ रहे हो भाई?
4: नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं. अच्छा मुकेश जी, आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है, ब्रेक काम नहीं कर रहे. सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा.
3: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
4: सर, वो
3: ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया. मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया.
4: नहीं सर,
3: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे.
4: नहीं सर, कुछ हो नहीं पाया.
3: क्यों नहीं हो पाया
4: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
3: है
4: सर, रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
3: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
4: अरे सर, मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मतलब हम
3: क्या करा दूँ
4: सर? मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
3: कैसी FIR? दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल तो नहीं है तू?
4: अरे सर, जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे आप? गुस्सा तो मत करिए कम से कम.
3: गुस्सा ना करूँ, नई गाड़ी थी हमारी.
4: नहीं सर, आप आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारा भी तो उसमें कुछ गया है, हमने भी तो ग्रीस व्रीस लगाया.
3: उसमें
4: ग्रीस
3: तुम्हारा
4: ग्रीस लगाया, उसमें हमने पेट्रोल डाला.
3: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगाया. आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में.
4: अच्छा सर,
3: मुझे चाहिए अपनी वापस.
4: सर आप इतना गुस्सा ना करें,
3: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की.
4: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें. अच्छा सर, ऐसा चल सकता जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा.
5: मुकेश, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ, मुर्गा बना दिया तुम्हारा.
3: तो जान निकाल दी हमारी.
5: मुकेश, आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप में, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे. मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए.
3: कुकड़ू कू.
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना.
7: हिट गाना.

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। सैयारा फेम डायरेक्टर मोहित सूरी और रामगोपाल वर्मा कोलैब करने वाले हैं, एंड दिस इज हैपनिंग फॉर अ गैंगस्टर फिल्म जिसको YRF प्रोड्यूस करेगा। सो मोहित सूरी जो है वो इस फिल्म की कहानी लिखेंगे, डायरेक्ट करेंगे रामगोपाल वर्मा, एंड लाइक आई सेड बैकिंग होगी YRF की। बाकी की डेट्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। आलिया भट्ट और सिस्टर शाहीन भट्ट की अपकमिंग प्रोडक्शन डोंट बी शाई का ट्रेलर नहीं देखा तो देख लीजिए, बिकॉज दिस मूवी इज प्रॉमिसिंग लव, हार्ट ब्रेक एंड बैड डिसीजंस। एंड ऑनेस्टली ये सारी चीजें हमने अपनी जिंदगी में भर भर के की है यार, सो रिलेटेबिलिटी फैक्टर काफी अमेजिंग है। बाकी द मूवी इज सेट टू स्ट्रीम ऑन प्राइम फ्रॉम द 25th of September, सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। डायरेक्टर रिभु दास गुप्ता की अपकमिंग थ्रिलर में लीड रोल निभाने वाले हैं जॉन एब्राहम, जिसकी शूटिंग इस महीने से लंदन में शुरू हो जाएगी। बाकी की डेट्स इस फिल्म के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, इनफैक्ट अभी तक इसका टाइटल भी डिसाइडेड नहीं है, बट जैसे ही कुछ और पता चलेगा आपको जरूर बताऊंगी। अभी के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल।

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड हो आप, और इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, लेट मी क्लैरिफाई, मैं तो बॉलीवुड गेम खेलने की बात कर रही हूँ यार। सो बेसिकली हर रोज की भांति आज भी मैं आपके अंदर के फिल्मची को जगाने की कोशिश कर रही हूँ। सो द ड्रिल इज कि आपको मेरे इंस्टा पे जाके अपना नंबर डीएम करना होता है, एंड देन मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत करती हूँ। आज सबसे पहले हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे कौन है?
3: हाय श्रुति, मैं अरुल बात कर रहा हूँ।
0: हाय अरुल, कैसे हो आप?
3: बढ़िया हूँ, आप बताओ?
0: बिल्कुल बढ़िया,
3: मैं गेम खेलने के लिए तैयार हूँ।
0: क्या बात, पूछने के पहले ही। चलिए फिर आपके अंदर के फिल्मी कीड़े को जगाते हैं। मेरा पहला सवाल है, रीसेंट हिंदी फिल्म वो कौन सी है जिसमें धर्मेंद्र पाजी और शबाना आजमी के बीच चुंबन है?
3: रॉकी रानी की प्रेम कहानी।
0: बहुत ध्यान से देखे हैं आप। एनीवे, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में रॉकी की दादी कौन है?
3: जया बच्चन।
0: जया बच्चन की फिल्म जिसमें उनका एक भी डायलॉग नहीं है, वो बस लालटेन जलाती दिखती है सफेद साड़ी में।
3: सफेद साड़ी में लालटेन जलाती दिखती है।
0: हाँ जी,
3: शोले।
0: क्या बात है, शोले में धन्नो किसकी घोड़ी है?
3: हेमा मालिनी।
0: हेमा मालिनी अपने बच्चों के घर बारी बारी से किस फिल्म में जाती हैं?
3: बागबान।
0: क्या बात है, बागबान में टाइपराइटर कौन चलाता है?
3: बच्चन साहब।
0: अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा किस फिल्म में बने हैं?
3: कल्की।
0: कल्की में कल्की की मम्मी कौन है?
3: दीपिका।
0: दीपिका पाडुकोन की फिल्म जिसमें वो अपने रियल लाइफ हस्बैंड के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती हैं। अटक गए तो अटक गए हैं अरुल, अटक गए हैं। कोई बात नहीं यार, बट यहाँ तक इतना मस्त जो गेम खेला है उसके लिए आपको ये टैग तो जरूर बनता है।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: तो बस इसके आगे का गेम अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, देन यू ऑलरेडी नो द ड्रिल। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और आओ साथ मिलके ढूंढते हैं आपके अंदर के फिल्मची को। राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स ऑन।

0: साथ जीतूराज only on मिर्ची it's hot।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बाद देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक और त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो। हैं ई का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे। कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखाओ और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: साथ जीतूराज only on मिर्ची it's hot।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची it's hot।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून हूँ आप, आने से पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, मैं तो मिर्ची फिल्मची गेम की बात कर रही हूँ यार, जहाँ आपको मैं अपने इंस्टा पे जाके मेरे डीएम्स में अपना नंबर भेजने की बात कहती हूँ ताकि मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत कर सकूँ। तो आज हमने आरुल के साथ शुरू किया, बट अब रूहान आगे का गेम कंटिन्यू करेंगे। तो तैयार है रूहान? ऑल राइट, सो माई क्वेश्चन इज की दीपिका पादुकोण किस फिल्म में अपने रियल लाइफ हस्बैंड के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नजर आई हैं?
3: बाजीराव मस्तानी।
0: यस, पहला इंसान जिसने एकदम एक बार में ही गेस कर लिया। बाजीराव मस्तानी में किससे उसका गुरूर छीन लिया जाता है?
3: प्रियंका चोपड़ा।
0: सब पता है लड़के को। प्रियंका चोपड़ा किस फिल्म में सुपर हीरो की वाइफ बनी है?
3: क्रिश 3।
0: क्या बात, क्रिश में किसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल होता है?
3: ऋतिक रोशन।
0: ऋतिक रोशन कौन सी फिल्म में मुगल राजा बने हैं?
3: जोधा अकबर।
0: सब पता है भाई, जोधा अकबर में अकबर की राजपूत वाइफ कौन है?
3: ऐश्वर्या राय।
0: ऐश्वर्या राय किस फिल्म में शायरा बनी है?
3: ऐ दिल है मुश्किल।
0: ऐ दिल है मुश्किल में अपनी दोस्त से एक तरफा प्यार किसको होता है?
3: रणबीर कपूर।
0: रणबीर कपूर ने किस फिल्म में अपना टावल गिराया है?
3: सावरिया।
0: सावरिया में उनकी हीरोइन कौन है?
3: आई गेस इट्स सोनम कपूर।
0: यस इट इज। सोनम कपूर की किस फिल्म में कबूतर का नाम मसक कर लिया?
3: दिल्ली 6 मैंने देख रखी है।
0: क्या बात, दिल्ली 6 के मेल लीड कौन है?
3: अभिषेक बच्चन।
0: अभिषेक बच्चन की फिल्म जिसमें उनका सरनेम आता है?
3: बोल बच्चन।
0: बोल बच्चन में झूठ किसको पसंद नहीं?
3: अजय देवगन।
0: अजय देवगन किस फिल्म में 2 अक्टूबर को पंजिम जाते हैं?
3: दृश्यम ऑफ कोर्स।
0: दृश्यम में लेडी पुलिस ऑफिसर कौन है?
3: तब्बू।
0: तब्बू की फिल्म जिसमें वो अपने पति को मार देती है?
3: अंधाधुन।
0: अंधाधुन में अंधे होने की एक्टिंग कौन करता है?
3: आयुष्मान खुराना।
0: आयुष्मान खुराना किस फिल्म में फोन पे लड़की बन के बात करते हैं?
3: ड्रीम गर्ल।
0: ड्रीम गर्ल आपकी कौन है? नेवर माइंड, बट सिंगल होने का मतलब ये थोड़ी है कि आपको ये टैग नहीं दूंगी मैं।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: वेल आई एम श्योर ये गेम सुन के आपके अंदर का फिल्मी कीड़ा भी एकदम से जाग जाता होगा, तो उसको जगा के ही रखना क्योंकि हर रोज इस गेम का सिलसिला मेरे शो पे जारी रहता है। मिर्ची श्रुति के इंस्टा पे जाके अपना नंबर मुझे डीएम करो एंड रेस्ट आई विल टेक केयर ऑफ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल।

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Murga, murga. La vizba la murga. Mirchi, murga.
1: हेलो
2: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारे रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपको?
1: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
2: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई हैं ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाए को मुड़ने के लिए, जब दाए मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज सुन के। आज जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम कि छूने भी नहीं दिए, हम धोलाए भी नहीं है।
1: क्या तुझे पागल लगा?
2: नहीं, वो मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
1: क्या कहना है?
2: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना मेरी बात है, चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू चारू चलो। हेलो हेलो हेलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता चारू, प्लीज बुरा मत माने यार थोड़ा सा। नहीं रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स

0: जी आहा। एक नारी या तो बेचारी या फिर सब पे भारी।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से तो जनरली हमें ऐसे ही पिक्चराइजेशंस मिलते हैं इफ वी टॉक अबाउट द फीमेल प्रोटैगनिस्ट्स ऑफ आर मूवीज। अक्सर दो एक्सट्रीम्स में देखा है हमने उन्हें, या तो बेचारी होती हैं या फिर एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन जिनके पास कोई वीकनेस नहीं होती। लेकिन आज मैं पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू कुछ ऐसी फिल्मों को एक्सप्लोर कर रही हूं जिनमें एक्चुअल में औरतों को समझा गया, उनके फ्लॉज को भी उतना ही एक्नॉलेज किया गया जितने उनके अच्छे एट्रीब्यूट्स को। इन द लिस्ट सबसे पहले हमने बात की पीकू के बारे में। अब नंबर दो पे बात करते हैं फिल्म इंग्लिश इंग्लिश से श्रीदेवी मैम के कैरेक्टर शशि गोडबोले के बारे में। सो ये फिल्म गौरी शिंदे ने लिखी भी है, डायरेक्ट भी की है और ये 2012 में रिलीज हुई थी, जिसमें शशि गोडबोले एक होममेकर, एक माँ, एक वाइफ और सबसे इम्पोर्टेंट एक महिला हैं, जिसे धीरे धीरे रियलाइज होता है कि यार घर संभालना उसकी पूरी आइडेंटिटी नहीं हो सकती। इस फिल्म की ब्रिलियंस ये है कि शशि कोई रिवॉल्यूशनरी कैरेक्टर नहीं है, वो ऑर्डिनरी है। वो घर के लिए लड्डू बनाती है, फैमिली को खुश रखने की कोशिश करती है, लेकिन इंग्लिश ना बोल पाने की वजह से उसी फैमिली के सामने इनसिक्योर भी फील करती हैं। सो डायरेक्टर गौरी शिंदे ने शशि की जर्नी को लैंग्वेज सीखने से ज्यादा सेल्फ वर्थ डिस्कवर करने की जर्नी बना दी और श्रीदेवी मैम ने बिना ओवर एक्टिंग के एक ऐसी वुमन को प्ले किया जिसके अंदर का कॉन्फिडेंस हम स्लोली स्क्रीन पर वापस आता देखते हैं। इन शॉर्ट, इंग्लिश विंग्लिश रिमाइंड्स अस कि कभी कभी दुनिया को इम्प्रेस करने से पहले खुद को इम्प्रेस करना जरूरी होता है। मूविंग ऑन नंबर तीन पे लेट्स टॉक अबाउट 2018 में आई फिल्म सर से तिलोत्तमा शोमे के कैरेक्टर रत्ना के बारे में, जो एक डोमेस्टिक हेल्प है। फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है रोहेना गेरा ने, जहां एक डोमेस्टिक वर्कर रत्ना अश्विन यानी कि एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाले इंसान के यहाँ काम करती है। दोनों के बीच फीलिंग्स डेवलप होती हैं, लेकिन फिल्म का सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या ये दोनों प्यार कर सकते हैं। फिल्म पूछती है कि भाई क्या सोसाइटी उन्हें इक्वल समझेगी। एंड डायरेक्टर रोहेना ने रत्ना को सिर्फ एक मेड या लव इंटरेस्ट नहीं बनाया, उसके अपने एम्बिशंस भी दिखाए हैं। वो टेलर बनना चाहती है, अपनी लाइफ बनाना चाहती है और अपनी डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। एंड भाई साहब, द काइंड ऑफ एक्टर तिलोत्तमा शोमे इज, उनकी परफॉर्मेंस इतनी रिस्ट्रेन्ड है कि रत्ना को देखते वक्त लगता है कि हम किसी कैरेक्टर को नहीं, किसी रियल वुमन की लाइफ क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये फिल्में अगर अभी भी आपकी वॉचलिस्ट में नहीं है देन प्लीज पुट इट इन। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ और बाकी की दो फिल्मों को अभी से कुछ ही देर में वापस डिस्कस करूंगी। सो यू बेटर स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: या तो बेचारी या फिर सब पे भारी।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: इन जनरल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जितनी भी मूवीज आई हैं उसमें महिलाओं को कुछ इसी तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, या तो वो एकदम बेचारी सी होंगी या फिर स्ट्रांग इंडिपेंडेंट वुमन जिसके अंदर कोई कमी ही नहीं है, कोई वीकनेस ही नहीं है। बड़ाश पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसी फीमेल प्रोटैगनिस्ट्स को डिस्कस कर रही हूं जिनको देख के एक्चुअली फील हुआ यार ये तो अपनी सी कहानी लग रही है। लिस्ट में सबसे पहले हमने डिस्कस किया पीकू को, नंबर दो पे फिल्म इंग्लिश से शशि गोडबोले को, नंबर तीन पे फिल्म सर से रत्ना को, अब बारी है नंबर चार पे टू डिस्कस अबाउट लापता लेडीज की लेडीज। ये फिल्म आई थी 2024 में, डायरेक्ट किया है इसे किरण राव ने। फिल्म की ओरिजिनल कहानी बिप्लब गोस्वामी ने लिखी है लेकिन जो स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स हैं उन्हें लिखा है स्नेहा देसाई ने। और अगर आप इस फिल्म को सरफेस लेवल पे देखोगे तो आपको दो दुल्हनों की हिलेरियस स्टोरी दिखाई देगी जो ट्रेन में लिटरली एक्सचेंज हो जाती है, लेकिन अंदर से ये फिल्म एक बहुत सिंपल सवाल पूछती है कि अगर एक महिला को कभी खुद से डिसाइड करने का मौका मिले तो वो एक्चुअली चाहती क्या है। फिल्म में दो प्रोटैगनिस्ट्स हैं, फूल और जया। दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से आती हैं लेकिन दोनों को अपनी आइडेंटिटी के साथ निगोशिएट करना पड़ता है। फिल्म की डायरेक्टर किरण राव ने फिल्म को प्रीची बनाए बिना ये दिखाया है कि एजुकेशन सिर्फ स्कूल जाना नहीं होता, अपनी आवाज पहचानना भी एजुकेशन है, जहां फूल का इनोसेंस और जया के एम्बिशन दोनों मिलकर एक ब्यूटीफुल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं। यस, लापता लेडीज इज फनी, वार्म एंड डिसेप्टिवली सिंपल, बट अंडरनीथ इट्स अबाउट वुमेन डिस्कवरिंग दैट उनकी जिंदगी उनके हाथों में है। And now, last but definitely not the least, number 5 पे let's talk about Mrs. ये फिल्म आई थी 2025 में, डायरेक्ट किया है इसे आरती काड़व ने, लिखा है हरमन बावेजा के साथ साथ आरती काड़व एंड अनु सिंह चौधरी ने। और फिल्म मिसेस की रिचा प्लेड बाय सानिया मल्होत्रा एक न्यूली मैरिड वुमन है। शादी से पहले उसके ड्रीम्स होते हैं, डांस है, अपनी आइडेंटिटी है, बट शादी के बाद सडनली उसकी दुनिया किचन, एक्सपेक्टेशंस और घर कैसे चलाना है में ही सिमट जाती है। और इस फिल्म की सबसे अनकंफर्टेबल चीज ये है कि यहाँ कोई एक विलन नहीं है, ये पूरा का पूरा सिस्टम ही ऐसा है। डायरेक्टर आरती ने रिचा को एक एंग्री फेमिनिस्ट स्टीरियोटाइप नहीं बनाया। शी इज इनिशियली एक्साइटेड अबाउट मैरिज, शी वांट्स टू फिट इन, शी वांट्स टू बी लाइक्ड, बट धीरे धीरे उसको भी रियलाइज होता है कि भाई मैं वाइफ बनी हूँ या सिर्फ एक फंक्शन बन के रह गई हूँ। इन शॉर्ट, मिसेस का सबसे पावरफुल क्वेश्चन है कि अगर एक महिला पूरा घर संभालेगी तो भाई उसकी अपनी लाइफ कौन संभालेगा। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज, only on Mirchi, it's hot.
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई, मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बात देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो। ई का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे। कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखाओ और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है।
0: साथ जीतूराज, only on Mirchi, it's hot.
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
3: only on Radio Mirchi, it's hot.

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। सैयारा फेम डायरेक्टर मोहित सूरी और रामगोपाल वर्मा कोलैब करने वाले हैं, एंड दिस इज हैपनिंग फॉर अ गैंगस्टर फिल्म जिसको YRF प्रोड्यूस करेगा। सो मोहित सूरी जो है वो इस फिल्म की कहानी लिखेंगे, डायरेक्ट करेंगे रामगोपाल वर्मा, एंड लाइक आई सेड बैकिंग होगी YRF की। बाकी की डेट्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। आलिया भट्ट और सिस्टर शाहीन भट्ट की अपकमिंग प्रोडक्शन डोंट बी शाई का ट्रेलर नहीं देखा तो देख लीजिए, बिकॉज दिस मूवी इज प्रॉमिसिंग लव, हार्ट ब्रेक एंड बैड डिसीजंस। एंड ऑनेस्टली ये सारी चीजें हमने अपनी जिंदगी में भर भर के की है यार, सो रिलेटेबिलिटी फैक्टर काफी अमेजिंग है। बाकी द मूवी इज सेट टू स्ट्रीम ऑन प्राइम फ्रॉम द 25th ऑफ सेप्टेम्बर, सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। डायरेक्टर रिभु दास गुप्ता की अपकमिंग थ्रिलर में लीड रोल निभाने वाले हैं जॉन एब्राहम, जिसकी शूटिंग इस महीने से लंदन में शुरू हो जाएगी। बाकी की डेट्स इस फिल्म के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, इनफैक्ट अभी तक इसका टाइटल भी डिसाइडेड नहीं है, बट जैसे ही कुछ और पता चलेगा आपको जरूर बताऊंगी। अभी के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका वेंसडे की इस खूबसूरत शाम में। वैसे वेंसडे ना एक ऐसा दिन होता है जो यार ज़्यादा बोलता नहीं पर सब कुछ समझ जाता है। मतलब मंडे का ड्रामा भी ये देख चुका होता है, फ्राइडे के प्लान भी ये जान लेता है, बस बीच में बैठ कर ना हमारे सारे प्लान को जज कर रहा होता है कि अच्छा बड़े बड़े वादे किए तुमने वीकेंड के, चलो देखते हैं कर भी पाओगे या नहीं। वैसे आज का दिन ना थोड़ा कंपोज थोड़ा स्मग जरूर लगता है, तो यार समझ जाओ वेंसडे अपना काम कर रहा है। आप भी बताओ दोस्तों, आज आप थोड़ी कंपोज थे या कंपोज रहने की सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे? क्योंकि मुझसे पूछो तो यार मैं बहुत ही ज़्यादा कंपोज नहीं थी, लेकिन जब कभी भी शाम को आपके लिए धमाकेदार गाना बजाने का मौका मिलता है तब यार ये पूरी कायनात सारा कंपोजर मेरे लिए लेकर आती है। तो चलिए वही करते हैं, आपके लिए बजाते हैं ये अगला धमाकेदार गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iscabana, puscabana, sacabana.
2: Rabana.
1: Burca, burca. La vieva la burca.
2: Milci, burca.
3: हेलो
4: हेलो मुकेश जी,
3: कौन
4: मुकेश जी? मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ, राणा मोटर से। आपने जो 1000 दी थी ना, उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था, वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली। थोड़ा
3: नहीं हो पाया भाई?
4: हाँ, वो नहीं हो पाया सर।
3: क्यों नहीं हो पाया
4: सर? वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा सर, आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की।
3: हाँ
4: सर, वो भी हो नहीं पाई है, वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी।
3: नहीं, क्या नहीं पाया तुम्हारे यार, रोज के तुम्हारे जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, क्या मजाक ही क्या है ये?
4: नहीं मुकेश जी, मैं समझ रहा हूँ वो एक
3: क्या समझ रहे हो भाई।
4: नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं। अच्छा मुकेश जी, आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है, ब्रेक काम नहीं कर रहे। सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा।
3: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
4: सर? वो
3: ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया।
4: नहीं सर,
3: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे।
4: नहीं सर, कुछ हो नहीं पाया।
3: क्यों नहीं हो पाया
4: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी।
3: है
4: सर, रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी।
3: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
4: अरे सर, मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मतलब हम
3: क्या करा दूँ
4: सर? मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
3: कैसी FIR? दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल तो नहीं है तू?
4: अरे सर, जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे, आप गुस्सा तो मत करिए कम से कम।
3: क्या गुस्सा ना करूं, नई गाड़ी थी हमारी।
4: नहीं सर, आप आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारे भी तो उसमें कुछ गया है, हमने भी तो ग्रीस व्रीस लगाया।
3: उसमें ग्रीस
4: ग्रीस लगाया, उसमें हमने पेट्रोल डाला है।
3: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगा। आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में।
4: अच्छा सर,
3: मुझे चाहिए अपनी वापस।
4: सर आप इतना गुस्सा ना करें,
3: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की।
4: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें। अच्छा सर, ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा।
5: मुकेश, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ, मुर्गा बना दिया तुम्हारा।
3: तो जान निकाल दी हमारी।
5: मुकेश, आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप में, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे। मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए।
3: कुकड़ू कू।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शारदा लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और बातें हो रही है 2009 के एक ऐसे एल्बम की जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट था। एल्बम था प्रीतम ने बनाया हुआ लव आजकल का, तो ये तो आपको याद होगा ही, लेकिन इसका जो ये खास गाना है जो सीधा साधा नहीं था, बिल्कुल था ट्विस्ट, पूरा मूड पार्टी मोड में स्विच कराने वाला एक गाना, जो यार लिखा तो वैसे इरशाद कामिल ने था, सिंगर थे नीरज श्रीधर और म्यूजिक था प्रीतम का। और जब भी शाम को थोड़ा ग्रूव चाहिए था ना तो हम ट्विस्ट सुनते थे, क्योंकि यार नीरज श्रीधर की एनर्जेटिक आवाज़ ही ऐसी थी कि यार अगर तुम बस बैठे हो ना तो भी थिरकने लग जाते थे, और प्रीतम का फंकी कंपोजिशन, इन दोनों का बहुत ही परफेक्ट मेल था, और ये जो गाना था हर पार्टी में अपने आप को पोजीशन कर ही लेता था। वैसे मज़े की बात तो ये है कि इस सॉन्ग की कोरियोग्राफी में सैफ अली खान ने अपने नेचुरल डांसिंग स्टाइल को फुल ऑन एक्सप्लोर किया था, जहाँ उन्होंने स्पॉन्टेनियस डांस मूव्स किए थे, मतलब वो ज़्यादा कोरियोग्राफी हुई ही नहीं थी उस मूवी में, जो फिल्म में सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग था। वैसे प्रीतम और इरशाद कामिल का कोलैबोरेशन फुल ऑन फन वाइब, ये गाना एक इंस्टेंट क्राउड पुलर बन ही गया था, और आज भी उतना ही हमें थिरकाता है, उतना ही हमें डांस करने पे मजबूर करता है। तो आप भी बताना कि आपका ट्विस्ट मोमेंट कब था, टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और क्या आज भी ये गाना सुन के आप भी अपने आप में डांस करते हो। वैसे इस एल्बम के और भी गाने के बारे में बात होने वाली है, तो कहीं ना जाइए, बने रहिए मेरे साथ राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
1: हिट, हिट, हिट, हिट गाना।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और बातें हो रही है 2009 के एक ऐसे एल्बम की जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट था। जी हाँ, लव आज का कल का, लव आजकल कंपोज्ड बाय प्रीतम। और उस एल्बम का जो ये गाना है, ये एक ऐसा गाना था जिसने यार ब्रेकअप को भी ना मुस्कुरा कर देखना सिखा दिया था। ऑफकोर्स आपने गेस कर ही लिया होगा, चोर बाजारी। मतलब कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि ज़्यादातर ब्रेकअप सॉन्ग्स रुला देते हैं या फिर फिलोसॉफिकल हो जाते हैं, मतलब अरिजीत सिंह टाइप्स, लेकिन चोर बाजारी ये हार्ट ब्रेक को भी ना थोड़ा शरारती बना देता था। मतलब अगर आज की शाम में ट्रैफिक में फंसे एक्स की याद आ भी जाए तो ये गाना कहता है कि यार थोड़ा हंस लो उस पे, क्योंकि नीरज श्रीधर और सुनिधि चौहान की नोकझोंक भरी वोकल्स बिल्कुल दो एक्स लवर्स की टीजिंग जैसी लगती है। और प्रीतम ने इसमें दर्द को ढोलक और बाउंस के साथ पैकेज किया। मतलब सोचिए क्या कमाल का कॉन्ट्रास्ट है। मज़े की बात तो ये है कि इम्तियाज़ अली ने इस गाने को ना स्पेसिफिकली सैड सेपरेशन जोन में नहीं रखा था, डेलिबरेटली प्लेफुल बनाया था, क्योंकि जय और मीरा का जो रिलेशनशिप है वो ख़त्म होके भी मूवी में ख़त्म नहीं हुआ था, और इसीलिए गाना ब्रेकअप सॉन्ग होकर भी सेलिब्रेशन लगता है। और वो अकॉर्डियन स्ट्रीट बैंड जैसा जो फील है ना, वो यार दिल्ली की गलियों में सीधा लेके जाता है, जहाँ दिल और ईगो दोनों साथ में भाग रहे होते हैं। जैसे आप भी बताना कि हार्ट ब्रेक का कौन सा ऐसा सॉन्ग है जो आपको बहुत पसंद है। क्या वो इसी तरह हल्का वाला गाना है या फिर दिल तोड़ के चीर देने वाला गाना है? टेल मी ऑन इंस्टा आरजी मिर्ची सिद्धि SIDDHI। फिलहाल करेंगे इसी एल्बम पे थोड़ी और बातें, लेकिन आपके लिए राइट हियर चोर बाजारी ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची it's hot।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर तो मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक और त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं, ये का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां भूलना मत, हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जब धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगा है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @ मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: साथ जीतूराज। Only on मिर्ची it's hot।

लंबी लंबी ट्रिप्स के बाद अगर कोई एक चीज की क्रेविंग होती है तो वो क्या है? शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और सबके दिल से एक ही आवाज निकली होगी, घर के खाने की। जी हाँ, सफर चाहे कितना भी अच्छा हो, बाहर कितना भी खा लिया हो, एक पॉइंट के बाद ना दिल बस कुछ सिंपल, गर्मा गर्म और अपना सा चाहता है। आपने कभी नोटिस किया है, थकान तो आधी तब उतर जाती है जब किचन से हल्की सी तड़के की खुशबू आती है और फिर याद आता है कि कुछ कंफर्ट फूड ना फैशनेबल नहीं होते, बस फॉरएवर होते हैं। और मेरे लिए उस सुकून का एक ही नाम है, एक गर्मा गर्म बोल ऑफ मूंग दाल की खिचड़ी, हल्की सी घी, साथ में थोड़ा सा अचार, और बस जैसे सफ़र की सारी थकान ही उतर गई हो। बॉडी को ऐसा ईज मिलता है और दिल को भी इतना ज़्यादा सुकून मिलता है विद जस्ट दैट वन बोल ऑफ मूंग दाल की खिचड़ी। इतना सिंपल सा खाना, लेकिन क्या कमाल का कम्फर्ट है, ऑनेस्टली अंडररेटेड। और ऐसे ही घर वाले स्वाद के लिए आज ही ले आइए दीप प्रीमियम इंडियन ओरिजिन मूंग दाल फ्रॉम योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी स्टोर। दीप, खाओ तो जानो और मुझे बताओ कि आपका कंफर्ट फूड क्या है। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: शाम शारदा.

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और बातें हो रही है 2009 के उस सुपर डुपर हिट एल्बम की जिसका यार हर एक गाना धमाकेदार था, कंपोज्ड बाय प्रीतम। 2009 का लव आजकल का एल्बम, और वैसे तो यार इसके सारे ही गाने अमेजिंग थे, लेकिन एक गाना ऐसा है जिसे सुन के ना शांत रहना इम्पॉसिबल हो जाता है, आर फेवरेट आहू आहू। क्योंकि सच बताओ तो आहू आहू वो गाना है जो सुनते ही बॉडी पहले रिएक्ट करती है और दिमाग बाद में बोलता है, फिर चाहे इवनिंग ड्राइव टाइम हो या किचन में चाय बन रही हो, इस बीट पे शोल्डर्स खुद हिलने लगते हैं। क्योंकि नीरज श्रीधर की जो प्लेफुल वोकल्स है, मास्टर सलीम का पंजाबी फायर और सुजन डी मेलो का एटीट्यूड और ऊपर से प्रीतम के ढोल मीट्स क्लब का ग्रूव, ये गाना मतलब फुल ऑन कंट्रोल्ड मैडनेस है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि ये जो सॉन्ग का फोक क्लब फ्यूजन है ना, उस वक्त ही इतना ज़्यादा फ्रेश लगता था, और ना सिर्फ उस वक्त अभी भी उतना ही ग्रूविंग है, और उसके ऊपर मास्टर सलीम का जो रस्टिक पंच है उसने इस ट्रैक को वो देसी स्वैगर दिया था जो हमें सीधा डांस फ्लोर पे लेके जाता है। वैसे ऑनेस्टली ये जो गाना है वो उन रेयर गानों में से है जो थोड़ा सा फ्लर्ट करता है, थोड़ा सा टीज करता है और बहुत ज़्यादा ग्रूव कराता है। तो चलिए आपको मैं चैलेंज देती हूँ कि आहू आहू सुन के ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप स्टिल बैठे हो। टेल मी ऑन कि ये गाना सुन के क्या आपने थोड़ा हेड बॉप किया या फिर फिंगर टॉप किया या फिर स्टरिंग पे बीट मारी, और अगर मारी तो यू आर कॉट। दोस्तों मुझे जरूर बताना कि ये सब हुआ कि नहीं। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और तब तक के लिए आपके लिए लव आजकल का आऊं आऊं राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. La
1: virtua la burka. Mirchi, burka. हेलो
2: दिमाग खराब कर रखा है रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई।
1: हाँ जी
2: यार कमाल कर दिया आपने जो फोटो खींचा थे मेरे बेटे की शादी का सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार दिमाग खराब कर दिया।
1: क्यों सर जी क्या हो गया फोटो में।
2: अरे फोटो आकर देख यार यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है सबके फोटो अजीब से आए यार सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने मेरा दिमाग खराब।
1: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
2: फोटो बहुत अच्छा है सतीश चंद का एक बटन उसकी शादी के फोटो बता दिए यार सारे दिमाग
1: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
2: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ मतलब मैं पागल हूँ आपने एल्बम देखी है एल्बम देखी है
1: सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर बेहतरीन आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
2: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
1: अरे शर्म की क्या बात है सर
2: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार तूने किया क्या ये
1: किसी का
2: कपड़े गायब है एक आदमी का मैं खड़ा हूँ अजीब सा लग रहा हूँ यार मैं
1: लेंस कौन सा लगाया नहीं
2: क्या कौन सा लेंस लगाया है एक तो मतलब ये बदमाशी करते हो कपड़े
1: गायब नहीं
2: कल को
1: फोटो खींचे
2: अरे लेंस ऐसे
1: पूरे
2: कपड़े कौन से मैंने शेरवानी पहना की थी शेरवानी गायब है अंदर से सब दिख रहा है यार शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी
1: अरे
2: मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे
1: नहीं सर देखिए केस वेस की बात मत कीजिए इसने हमारा नाम है इलाके में।
2: अरे हमारा भी कुछ था अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे
1: सर क्या सुन के बनाया है
2: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया मेरा बेटा खड़ा है कपड़े नहीं है बहू उसका चलो छोड़ो मैंने देखा भी नहीं है वो खड़ा है जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है ऐसा लग रहा है यार पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
1: अरे नहीं सर कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे
2: गड़बड़
1: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम ऐसी कोई बात नहीं
2: यार इतना बुरा लग रहा है हर आदमी के प्लेट में हर आदमी के हाथ में प्लेट है कपड़े है
1: नहीं
2: दिखाइए आपका कपड़े कैसे आप उसको सही करिए यार
1: सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए
2: ऐसा सिस्टम है एक जगह होता है
1: कहाँ होता है बताइए।
3: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

अच्छा लगता है ना जब हमारे लिए कोई अबाव एंड बियॉन्ड जाए। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और सोचिए कि हम जिम ज्वाइन करें तो यार ट्रेनर सिर्फ एक्सरसाइज ही ना बताए बल्कि पोस्चर भी करेक्ट करे, प्रोग्रेस भी चेक करे और इंजरी होने से पहले ही रोक ले। यार कितना अच्छा लगेगा कि ऐसे अबाव एंड बियॉन्ड सभी अपने काम में जाए। क्योंकि यार बड़े बड़े डिसीजन जैसे कि होम बाइंग भी एक ऐसी ही चीज़ होती है जहाँ सिर्फ लोन अप्रूवल नहीं होता, राइट गाइडेंस, राइट प्लानिंग और वो एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए होता है जो हमें लॉन्ग टर्म में एक सही डिसीजन लेने में मदद करें। और इसी एक्स्ट्रा माइल के बारे में आज बात करने वाले हैं मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लायन मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
1: अब
3: मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बात देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक कॉल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं। ई का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमार रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे। कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमार कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखाओ और अपनी कितनी मिर्ची आए हुआ हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: जीतूराज। Only on Mirchi, it's hot.

एक सूटकेस में कितने सपने फिट हो सकते हैं। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जब भी कोई पढ़ने या करियर के लिए दूसरे देश जाता है ना, सूटकेस में कपड़े कम होते हैं लेकिन उम्मीदें ज़्यादा होती है। हर फ्लाइट एक नई बिगनिंग लेकर उड़ती है। और अगर आपकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन अमेरिका है और हेल्थ केयर फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, तो एम्स एजुकेशन कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लाया है। एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए F1 वीज़ा एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने पर I-20 इश्यू की जा सकती है। एक्सप्लोर कीजिए सर्जिकल, MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, एनेस्थीशिया और न्यूरो डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजीज के AAS डिग्री प्रोग्राम्स। और साथ ही रेपिटेड मेडिकल सेंटर्स में अनपेड क्लिनिकल इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है, जो देते हैं रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। आज ही विजिट कीजिए aimseducation.edu। एम्स एजुकेशन, स्टडी इन अमेरिका, ट्रेन इन हेल्थ केयर एंड टेक योर करियर फॉरवर्ड। और चलिए, सपनों की बातें हो रही है तो सपनों से भरा ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: Jay.

दोस्तों, बॉलीवुड का लैंडस्केप ना धीरे धीरे चेंज हो रहा है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और पहले ना एक फॉर्मूला होता था, बिग स्टार, बिग सॉन्ग्स, बिग रिलीज। आज ना इंडस्ट्री थोड़ा ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल हो चुकी है, क्योंकि एक्टर्स भी डिफरेंट कैरेक्टर्स ट्राई कर रहे हैं और डायरेक्टर्स भी यूनिक स्टोरीज एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब ऑडियंस भी स्मार्ट हो गई है, तो सिर्फ ग्लैमर नहीं, कॉन्टेंट भी डिमांड करती है। और शायद इसी वजह से कुछ फिल्म थिएटर में धमाका करती है और कुछ OTT पे कल्ट फॉलोइंग बना लेती है। यार, ये इंटरेस्टिंग फेज है जहां बॉलीवुड एक ही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, मल्टीपल लेन्स में ग्रो हो रहा है। और सच कहूं तो जब इंडस्ट्री एक्सपेरिमेंट करती है ना, तभी आइकॉनिक सिनेमा पैदा होता है। तो आप भी बताना, आप कौन सी टाइप की फिल्म ज्यादा पसंद करते हो? टेल मी ऑन इंस्टा @RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
1: हेलो
2: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपका?
1: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
2: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई हैं ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर, जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फोनवा बजा है तो आपकी आवाज सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज सुन के। आज जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो सीट को हम कि छूने भी नहीं दिए, हम धोलाए भी नहीं है।
1: क्या तुझे पागल लगा?
2: नहीं वो मैडम, हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
1: क्या कहना है?
2: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना मेरी बात है। चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू चारू चलो। हेलो हेलो हेलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा नहीं, रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों, प्यार का ना सबसे बड़ा सिम्टम क्या होता है? पागलपन। और वो भी वो वाला पागलपन जिसका कोई इलाज नहीं होता। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज बात उस गाने की हो रही है जो याद दिलाता है कि प्यार में ना थोड़ा पागल होना अलाउड है। सैयारा का गाना तुम हो तो, क्योंकि इस गाने को सुनते वक्त लगता है कि जैसे दुनिया का सारा लॉजिक एक तरफ और दिल एक तरफ। और इसे गाया और कंपोज किया गया है विशाल मिश्रा ने, जिनके गाने की ना एक खास बात होती है कि वो प्यार को परफेक्ट नहीं दिखाते, वो उसका पागलपन दिखा देते। किसी का मैसेज बार बार पढ़ना, बिना वजह स्माइल करना, हर गाने में एक ही चेहरा दिखाना, यार ये सब वही स्वीट मैडनेस है जो इस मेलेडी में महसूस होती है जब भी हम ये गाना सुनते हैं। और विशाल मिश्रा की सॉफ्ट वोकल्स और कंपोजिशन गाने की फीलिंग को इतना गहरा कर देती है ना कि लिसनर खुद अपनी कहानी सोचने लगता है। और शायद इसीलिए उनके रोमांटिक सॉन्ग्स इतने ज्यादा कनेक्ट करते हैं, क्योंकि उनमें प्यार कम और उसका पागलपन ज्यादा सुनाई देता है। तो चलिए आज कन्फेशन करते हैं, प्यार में आपने सबसे पागल चीज क्या की थी? लॉन्ग ड्राइव, लेट नाइट कॉल्स, या फिर किसी का लास्ट सीन चुप चुप के देखना? टेल मी ऑन इंस्टा @RJ मिर्ची सिद्धि, SIDDHI। और सुनते हैं विशाल मिश्रा ने गाया हुआ पागलपन वाला ये गाना, तुम हो तो, फ्रॉम सैयारा, राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

हर प्यार की एक किस्मत होती है दोस्तों, कुछ मिल जाते हैं और कुछ गाने बन जाते हैं। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और तुम मेरे ना हुए ना सही। ये वो गाना है जो सुनकर ना सिर्फ दिल भर ही नहीं आता, झूम भी उठ जाता है। मतलब थामा का ये जो नया ट्रैक है, रश्मिका मदाना की थ्रू, एक आग भी है और एक आंसू भी। सचिन जिगर का म्यूजिक, अमिताभ भट्टाचार्य के जो लिरिक्स है, मिलकर ऐसा कमाल करते हैं कि मान लो यार प्यार और पेन एक साथ बैठ चुके हो चाय के कप के साथ। मज़े की बात तो ये है कि शूटिंग के दौरान रश्मिका ने सिर्फ वन टेक में ये डांस किया था और पूरे के पूरे क्रू ने क्लैप करके उनकी तारीफ की थी, क्योंकि वो सीन प्योर हार्ट ब्रेक का रियल मोमेंट बन गया था। वैसे अगर आपने ये गाना सुना है तो आपको ये गाना कैसा लगा, टेल मी ऑन इंस्टेट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और अगर नहीं सुना है तो चलिए बजाते हैं आपके लिए, राइट, यू ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया की एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर तो मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है, कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो ई का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमार कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट, ओनली ऑन रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।

जिंदगी का ब्रेकअप मोड ऑन हो या मेल्ट डाउन, एक रेट्रो बीट लगाओ ना तो लाइफ फिर से किक स्टार्ट हो जाती है। शाम शांता लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, ये एक जिंदगी काफ़ी नहीं है, मोनिका ओ माई डार्लिंग का ये ट्रैक सुनते ही यार ऐसा लगता है जैसे आशा भोसले का एरा वापस आ चुका है। बेसलाइन रेट्रो, लिरिक्स रेबेलियस और वॉइस में फुल ऑन ड्रामा। वैसे ये गाना गाया है अनुपमा चक्रवर्ती श्रीवास्तवा ने, और इस गाने में वो सास डाला है जो कहता है कि यार प्यार गया तो क्या हुआ, मैं तो स्टिल मैं हूँ। वैसे डायरेक्टर वसन बाला ने सेट पर बोला था कि ठीक जैसे हेलन डांस करती है वैसे ही हुमा कुरेशी को डांस करना है, और कहीं ना कहीं हुमा कुरेशी ने भी अपने ग्लिटरी ड्रेस और ग्लिटरी अवतार में हेलन को मैच करने की कोशिश की है। वैसे आपने अगर ये मूवी देखी है तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए मोनिका ओ माई डार्लिंग का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

कुछ खास गाने और उनके कुछ खास किस्से। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और गेरुआ ये गाना सुनते ही ना एक अलग ही ड्रीमी सी फीलिंग आ जाती है। पर एक बहुत ही अमेजिंग सा फन फैक्ट है इस गाने का कि यार अरिजीत सिंह ने जब ये गाना रिकॉर्ड किया था तो बस एक टेक में रिकॉर्ड किया था। अब ऐसे तो कई सारे गाने हैं जो एक टेक में रिकॉर्ड किए जाते हैं, लेकिन ये गाना उसमें भी खास है क्योंकि रिकॉर्डिंग के टाइम पे ना बस डायरेक्टर ने बोल दिया था कि वार्म अप के लिए एक रफ टेक ले लो, मतलब जस्ट एक यू नो एक रिहर्सल टेक ले लो। और जब वो रफ टेक अरिजीत सिंह ने गाया तो वही बन गया फाइनल मास्टर टेक। और टीम ने कहा कि यार ये आवाज़ ही इतनी अमेजिंग है, इतना एफर्टलेस डेप्थ है इस आवाज़ में, इस टेक में, कि इसी टेक को फाइनल करते हैं। तो बस फाइनल टेक कभी किया ही नहीं और यही टेक फाइनल बन चुका था। तो मतलब बोलते हैं ना कभी कभी प्रैक्टिस भी परफेक्शन बन जाती है, तो अरिजीत जी के साथ कुछ ऐसा ही होता है। और शायद इसलिए ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सिंगर्स ऑफ इंडियन सिनेमा। वैसे आपका फेवरेट अरिजीत सिंह का गाना कौन सा, टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि IDDHI। और फिलहाल सुनते हैं ये वन टेक सॉन्ग ऑफ अरिजीत सिंह, गेरुआ, राइट हियर ऑन मिर्ची अ थॉट।

0: Mirchi. Escabana, pues cabana, sacabana.
1: Cabana.
0: Murga, murga. La virgo a la murga.
1: Mirchi, murga.
2: हेलो
3: हेलो मुकेश जी.
2: कौन
3: मुकेश जी? मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ, राणा मोटर से. आपने जो 1000 दी थी ना, उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था, वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली. थोड़ा
2: नहीं हो पाया भाई.
3: हाँ, वो नहीं हो पाया सर.
2: हाँ, नहीं हो पाया
3: सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी. अच्छा सर, आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की. सर वो भी हो नहीं पाई है, वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी.
2: नहीं, क्या नहीं पाया तुम्हारे यार, रोज गए तुम्हें, जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, क्या मजाक ही क्या है ये?
3: नहीं मुकेश जी, मैं समझ रहा हूँ वो एक
2: क्या समझ रहे हो भाई.
3: नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं. अच्छा मुकेश जी, आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है, ब्रेक काम नहीं कर रहे. सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा.
2: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
3: सर? वो
2: ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया. मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया.
3: नहीं सर,
2: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे.
3: नहीं सर, कुछ हो नहीं पाया.
2: क्यों नहीं हो पाया
3: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
2: है
3: सर, रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
2: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
3: अरे सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मतलब हम
2: क्या करा दूँ
3: सर? मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
2: कैसी FIR? दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल तो नहीं है तू?
3: अरे सर जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे आप? गुस्सा तो मत करिए कम से कम.
2: गुस्सा ना करूँ, नई गाड़ी थी हमारी.
3: नहीं सर, आप आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारा भी तो उसमें कुछ गया है, हमने भी तो ग्रीस व्रीस लगाया.
2: उसमें
3: ग्रीस
2: तुम्हारा
3: ग्रीस लगाया, उसमें हमने पेट्रोल डाला है.
2: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगाया. आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में.
3: अच्छा सर,
2: मुझे चाहिए अपनी वापस.
3: सर आप इतना गुस्सा ना करें,
2: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की.
3: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें. अच्छा सर, ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा.
4: मुकेश, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ, मुर्गा बना दिया तुम्हारा.
2: तो जान निकाल दी हमारी.
4: मुकेश आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप में, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे. मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए.
2: कुकड़ू कू.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज हंगामा आ रहा है ग्रैंड हैवी इमोशन सॉन्ग के पीछे से। जी हां, हम सबका फेवरेट डोला रे डोला। यार जब आप डोला रे डोला देखते हो तो लगता है कि बस ग्रेस, रिदम और शान ही शान है, क्योंकि माधुरी और ऐश्वर्या का डांस और प्योर पोइट्री है। पर पर्दे के पीछे एक सीन फुल पावर कंजप्शन मोड में था। जी हाँ, ये गाना इतने बड़े सेट पर शूट हुआ था, इतनी ज़्यादा लाइटिंग और इतने जनरेटर्स के साथ कि पूरी यूनिट मोस्टली रात को ही काम करती थी। और लाइट्स इतनी हैवी थी कि मुंबई के इवेंट वालों को जनरेटर्स मिलना मुश्किल हो गया था, क्योंकि देवदास के सेट ने ऑलमोस्ट सब कुछ बुक कर लिया था। मतलब देवदास का जो दर्द था ना, वो स्क्रीन पे तो चल ही रहा था, और जो भी शादी वाले लोग हैं उनका दर्द रियल ग्राउंड में दिख रहा था, क्योंकि जनरेटर्स ही नहीं मिल रहे थे। तो समझे दोस्तों, बॉलीवुड में ना जब इमोशंस बड़े होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ब्लॉकबस्टर लेवल का होता है। ऐसे ही पर्दे के पीछे की फिल्मी हंगामे चाहिए तो जरूर बताना। टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल सुनते ही अगला हॉट सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
1: अब
3: मिर्ची का
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और आज का हंगामा आ रहा है दिल धड़कना दो मूवी के गल्ला गुड़िया गानों से। वैसे यार ये गाना स्क्रीन पर तो फुल ऑन फैमिली मस्ती लगता है, मतलब सब नाच रहे हैं, कैमरा घूम रहा है, एनर्जी नॉन स्टॉप है। पर पर्दे के पीछे असली कमाल ये था कि डायरेक्टर ज़ोया अख्तर ने इस गाने को एक टेक में शूट किया है। जी हाँ, इसके लिए हर जो एक मूवमेंट था वो प्लान था, हर कैमरा टर्न प्लान था, हर एक्टर की एंट्री एग्जिट और कोरियोग्राफी डिटेल में रिहर्स की गई थी। तो कैमरा जब चालू हुआ यानी रोलिंग जब चालू हुई, उसके बाद पूरा गाना खत्म होने के बाद ही वो रोलिंग बंद की गई थी। और ज़ोया अख्तर ने खुद कहा था कि इतनी प्लानिंग और मैनेजमेंट हुई थी तब जाके ये पॉसिबल हुआ है। तो सोचिए दोस्तों, हम तो कभी कभी ऑफिस में अपने बॉस को अगर छुट्टी मांगनी है तो एक स्ट्रेट वॉइस नोट भी एक टेक में रिकॉर्ड करके नहीं भेज पाते, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा गाना, पूरा का पूरा कास्ट, मूविंग कैमरा, डांस, टाइमिंग, एक्सप्रेशन, सब कुछ एकदम सिंक में चल रहा था। मतलब यार स्क्रीन पर जो फुल चिल फैमिली वाइब लग रही थी ना, उसके पीछे स्टॉप वॉच लेवल डिसिप्लिन और टीम वर्क था। तो ये बात तो बहुत जाहिर सी है कि बॉलीवुड में ना कभी कभी सबसे नेचुरल दिखने वाली चीज उसके पीछे सबसे ज्यादा प्लानिंग होती है। तो दोस्तों आप भी मुझे बताना कैसा लगा आपको ये पर्दे के पीछे का किस्सा, और ऐसे ही गानों के पर्दे के पीछे के किस्से जानने के लिए मुझे जरूर बताना विच इज योर फेवरेट सॉन्ग। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और फिलहाल ये वन टेक का कोरियोग्राफ किया हुआ गाना सुनते हैं गल्ला गुड़िया फ्रॉम दिल धड़कने दो राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज, only on मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, वह जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है, कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक और त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं, ये का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां भूलना मत, हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। फुल एंटरटेनमेंट है यार, 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @ मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: साथ जीतूराज, only on मिर्ची it's hot।

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और इसी प्यारी सी एनर्जी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। और वैसे तो हमने आज थोड़ी लोकल, थोड़ी फिल्मी, थोड़ी ओटीटी और बहुत सारी नॉस्टैल्जिया शेयर की है और होप आज की जो आपकी शाम है थोड़ी सी लाइटर और ज़्यादा फिल्मी बन गई हो। और इसी के साथ कल मिलते हैं फिर एक बार विथ नई गपशप और नए सॉन्ग रिक्वेस्ट। तो अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट की लिस्ट रेडी रखना, सेंड मी ऑन इंस्टा @rjmirchisiddhi SIDDHI। और आप कहीं ना जाइए क्योंकि मिर्ची रोशी आने वाली है लव के नए फंडे लेकर। तो तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।